0: खट्टे तुरशीम खट मिठड़े ए सारे दे सारे ओ रस ने जो मैं अपने मुंह नाल परिपूर्ण परमात्मा दे नाम दा उचारण करदा। जितने खट मिठड़े रस ने, जितने तुरशीम रस ने है, सारे दे सारे रसां दा मैं आनंद उदो माण लैना जद रसना उस दे बोल मोल दिए, जद रसना उसका जप जप दिए। और इना सारे पदार्थां दे च मैं मसाले केड़े पाए ने, नाद संगीत दा मैं मसाला पाया है, सुनदा संगीत दे च, बोलदा संगीत दे च। तो जद बोलदा ते सुनदा मैं संगीत दे च, सुनना होर रसदायक हो जांदा है, बोलना होर रसदायक हो जांदा है। गुरु नानक दी ए गल अज दे युग दे ते बड़ी सार्थक आउंदी जा रही है कि कल युग में कीर्तन प्रधाना, हरि दी कीर्ति रागा नाल गायन करने और सुनने। जिथे सतगुरु ने कह दिता सी कल युग दे च ईश्वर प्राप्ति दा ए प्रधान साधन है, अज असी देखदे पया थकिया होया मनुख जहनी तौर ते शरीरक तौर ते, और बहुत सारे फिलसफे ए पढ़िया होया और अजोके ज्ञान विज्ञान नू ए समझदा होया, कॉलेज ते बड़ियां बड़ियां यूनिवर्सिटियां तो निकलिया होया, विश्वविद्यालय तो निकलिया होया ए मनुख, अज इस नू अगर कीर्तन दी खुराक ना मिले, ना दित्ती गई, तो इस दे पागल होण दे च कोई देर नहीं है। ए प्रधान साधन है, संसार नू इसने बहुत कुछ जान लिया, इनू कथा राही जनाण दी हुण कोई लोड़ नहीं है कि संसार की है। इते विद्यालयां चो सिक्के आ गया है, पदार्थ की ने, संसार की है, इहदे च हुण वक्त जाया करना बिल्कुल बेमैनी है। हुण ते दसना चाहिदा उस परिपूर्ण परमात्मा दे गुण की ने, ते उना गुणा नू प्राप्त किवें करिए, ते जे किधरे उहदे गुणा नू रागां विच मिश्रित करके गा के प्रगट किया जाए तो उदे गुण ते रसदायक ने, राग होर रसदायक कर देंदे ने, संगीत ऐसा कम कर देने जैसे कुछ मसाले पा दिते गए ने ते भोजन होर स्वादी हो गया है। तो अज दे इस कल युग दे दौर दे च गुरु नानक दी ए गल विश्वव्यापी सार्थिक होंदी जा रही है कि कल युग में कीर्तन प्रधाना, जोगी भी कीर्तन करन लग पे ने, सन्यासी भी कीर्तन करन लग पे ने, साजां दियां धुनां चर्च दे च भी वजन लग पईआं ने, कवाली संगीत मस्जिदां दे च भी आ गया है, दरगाहां दे च भी आ गया है, काबियां दे च भी आ गया है। तो एक गल तो स्पष्ट हो गई कि गाण नाल परिपूर्ण परमात्मा खुदावन ताला दे जिहड़े गीत ने, इनू संगीत दे ढाल के गायन करन नाल मन ते छेती असर पैंदा है और जल्दी सुकून मिलदा है। तो जिथे गुरु नानक दे कोलों यह रबाब की धुन छिड़ी सी, गुरुद्वारियां तो उठ के अज मंदिर मस्जिद ते चर्चा तक भी पहुंची है और संगीत दे आसरे ते परिपूर्ण परमात्मा दे गीत गुण गायन करके परमात्मा नाल जुड़न दे वसीले लभ रहे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने इह ते मसाला है संगीत, भोजन नूं होर स्वादी बना देंदा है, होर रसदायक जो है बना देंदा है। मारण नाद की है, छत्ती अमृत भाव एक जाको नदर करे, उस एक दा भाव, उस एक दी भावना, उस एक दी श्रद्धा जो अंदर पैदा हुई है, मन में 36 प्रकार दे भोजन छक ले रहे। भोजन 36 प्रकार दा अक्सर मनिया जांदा है, श्रृंगार 16 प्रकार दा गिणन दे जो है आया। मन दियां हालतां विद्वान 9 मनदे ने, जिन्हों 9 रस भी कह देंदे ने, मन दे वख वख इस ढंग दियां जो है गिणतियां ने। साहिब कहिंदे 36 प्रकार दा जो खाना है मनो में छक लिया, मनो में रस मान लिया, जिहड़ी उसकी भावना अंदर उजागर हो गई है, अंदर जो है पैदा हो गई है। इस वास्ते बाबा होर खाना खुशी खुआरे, जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। मनुख जिंदा रहिंदा अगर खून चलदा रहे, और खून तां चलदा रह सकदा है अगर मुंह दे भोजन चलदा रहे, खुराक चलदी रहे। खुराक खून है, खून जिंदगी है, और खून चलदे ने तो मन चलदा है, विचार चलदे ने तो मुख गलते आ गई भोजन थे। तो साहब इसने इंज तस्लीम कर देने कि है कुछ ऐसा भोजन जो खून दे विकार पैदा करता है ऐसा कुछ भोजन जो शरीर दे रोग पैदा करता है। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। वैसे तो एक दिन का खाना भी दस सकता है कि जो कुछ मैं खादा है शरीर दे अनुकूल है कि नहीं, मन दे अनुकूल है कि नहीं। अगर कोई शरीर शास्त्री होवे, अगर कोई अपने मन नूं पढ़न वाला होवे, ते उन्हें देखना चाहिए अज मैं खादा की है, क्योंकि खून दी गर्जिश ते खाण नाल है, विचारां दा दौर ते खाण नाल है, मन दे च विकार आ गए ने, तन दे च पीड़ा आ गई है, ये ते खाना दोषी है। और जे खाना दोषी है तो मनुख दोषी हो जांदा, विचार दोषी हो जांदे ने, शरीर रोगी हो जांदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी ए मनोत है कि बेशतर शरीरक रोग और मानसिक विकार इन्हां दा मूल कारण है आहार। अगर कोई मनुख अपने आहार दे प्रति सुचेत नहीं है, सावधान नहीं है, तो स्पष्ट है अपने रोगां प्रति और मानसिक विकारों प्रति सुचेत नहीं है। इस वास्ते फैसला कर देता है बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। ये ठीक है कि जीवन व्यापक है, वनस्पति दे च है, पशु पक्षियां दे च है, आदि मनुख प्रकृति दे हवाले सी, पहाड़ां दियां कंदरां च रहिंदा सी, रुखां तले रहिंदा सी, और प्रकृति ही जो उसनू खाण नू देवे ओही खांदा सी। इसदा स्वयं दा कोई चुनाव नहीं सी, क्योंकि मनुख अजे सभ्य नहीं होया सी। प्रकृति ने जो फुल दे दिते, फल दे दिते, ओ खा लिया। पर जद फुल ना मिले, फल ना मिले, तो फिर पशुआं दा शिकार। इस ते जीवन बतीत होंदा रहा, जिंदगी इस तरह लंघदी गई, आखिर सहजे सहजे मनुख सभ्य होया। सभ्य तो मुराद सभा दे च बैठण दी जा चाहिए, सभा नू समझण दी जा चाहिए, सभा दे च अपने आप नू पेश करने दा ढंग इस नू आया। और जो विचार मैनू नहीं चंगे लगदे वो सभा नू भी नहीं चंगे लगदे। सभा मैनू कैसी चंगी लगदी है और सभा नू मैं किस ढंग नाल चंगा लग सकदा, इस सोचनी दा जदो जन्म होया और इस सोचनी दे अनुकूल जद मनुख ने अपने आप नू ढा लिया तो उसनू आख्या गया सभ्य। तो इसकी सोच दे च ए भी गल आई कि मैथों घट तो घट किसे नू दुख पहुंचे, चोट पहुंचे, तो मेरे आहार दे च भी किसे नू चोट ना पहुंचे, मेरी खुराक दे च भी किसे नू चोट ना पहुंचे। वैसे ते बनस्पति दे च भी जी, दाणियां दे च भी जी, और पहला समग्र व्यापक जीवन पानी, पहला पानी जीव है। जित हरिया सब कोय, अहिंसक ते मनुख हो नहीं सकदा, नहीं ते पानी दा त्याग करना पेगा, वनस्पति दा भी त्याग करना पेगा, दाणियां दा भी त्याग करना पेगा, क्योंकि जेते दाने अन्न के जिया बाज न कोय। बस इतनी सोचनी अंदर जन्म लवे कि मेरे आहार तो दूसरे नू चोट घट पहुंचे। पशुओं का कुछ ऐसा जगत भी है जिथे मन विकसित हो गया है और मानसिक पीड़ा महसूस होंदी है, और जिथे मानसिक पीड़ा ज्यादा महसूस होवे उस पशु नू भी मनुष्य जैसा समझना चाहिदा है, मनुख जैसा समझना चाहिदा है। पर जिथे मानसिक सोचनी नहीं, मानसिक पीड़ा नहीं सिर्फ शरीर के ही पीड़ा है तो वह बनस्पति जैसे ने वह दाणिया जैसे ने क्योंकि दाणिया नू भी जद बुनदे आ तड़पदे वह भी ने दाणिया नू भी जद बुनदे आ उछलदे ने तड़पदे ने आवाज भी करदे ने तिड़ तिड़ करदे ने यह इना दे चीखण दी आवाज है तड़पदे हुए किसी पशु नू वेख के अगर मानसिक पीड़ा महसूस होवे तो उसनू तड़पदे हुए दाणिया नू वेख के भी पीड़ा महसूस होनी चाहिए दर्द महसूस होना चाहिए फिर भी खुराक खान लगया उदी ए सोचनी होवे कि मेरे आहार तो दूसरे नू घट तो घट ही चोट पहुंचे ताकि ऐसा आहार मेनू चोट ना पहुंचावे जिस आहार ने दूजिया नू चोट पहुंचाई है ए आहार इस नू भी चोट पहुंचाएगा एदे तन नू रोगी करेगा एदे मन नू पीड़त करेगा करीबन करीबन 90% मनुख दी अज खुराक ऐसी है दूजिया नू चोट पहुंचा के हासिल कीती जा रही है तो चोट पहुंचा के हासिल कीती गई खुराक खुराक भी चोट पहुंचाएगी खुराक भी जरब करेगी इस वास्ते गुरु नानक दा ए फैसला बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार हे बाबा हे मेरे मित्र हे सियाने सुचेत रह तेरे शरीरक रोगां लई तेरी मानसिक पीड़ा लई 90% ते जिम्मेवार है तेरा आहार तो जो आहार दे प्रति सुचेत नहीं वह विचार दे प्रति सुचेत नहीं हो सकता जो आहार दे प्रति सुचेत नहीं वह अपने शरीर दे प्रति भी सुचेत नहीं हो सकता और जो शरीर ते मन दे प्रति सुचेत नहीं उन्हें सभ्य नहीं कहा जा सकता असभ्य मनुख है अजे उसनु सभा विच बैठने की जांच नहीं आई अजे उसके अंदर पूर्ण तौर ते मनुखता प्रगट नहीं हुई तो प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज अपना उपदेश अपना संदेश खाने तो आरंभ करते ने फिर दूसरा आप पहनने का उपदेश देंदे ने
1: रता पहनण मनुरता सुपे दी सतदान नीली सिहाही कदा करनी पहरण पैर ध्यान कमर बंद संतोख का धन जो बन तेरा नाम बाबा होर पैनन खुशी खुआर जित पैदे तन पीड़िए मन में चले विकार खान पीण तो बाद पहनण दी मनुख सोचदा है और यह सिर्फ मनुख ही सोचदा है या इंज कह लो पहनण तो ही मनुखता आरंभ आउंदी है पहनण बारे पशुआं ने नहीं सोचिया पंछियां ने नहीं सोचिया धन गुरु नानक देव जी महाराज ते कहंदे ने विस्माद नांगे फिरे जंत इन्ना नंगे पशुआं नू देख के मैं ते विस्मादमई हो जांदा विस्मय हो जांदा है इना दे अंदर पहनण दा ख्याल नहीं पैदा होया ये इस तरह दे नाल नगनता दी प्रदर्शनी कर रहे ने एक मासूम बच्चा नवजायत बच्चा उस दे अंदर भी अजे पहनण दा भाव नहीं पैदा होया ये गल वखरी कि चीथड़िया विच कपड़िया विच मां बाप उस नूं लपेट के रखदे ने पर पहनण दा भाव अजे उस दे अंदर नहीं पैदा होया इस वास्ते कह देंदे ने ये मासूम बच्चा अजे असभ्य है सभ्यता बुद्धि दे विकास दे नाल नाल ही हुंदी है तो अजे बौद्धक विकास नहीं होया ये बच्चा मासूम इस तरह नगन निर्दोष है जिस तरह के पशु नगन निर्दोष ने मनुखता नहीं आरंभ हो सकी मनुखता सोचण नाल आरंभ हुंदी है और पशु सोच दे तो लाजमी वह पहनण लई भी सोच दे और नगनता उन्हां नूं महसूस आउंदी या इंज कह लो मनुखता इत्थों ही आरंभ आउंदी है जद नगनता महसूस होण लग पे यही कारण है कि जिस दे अंदर मनुखता ना आवे साडी भारतीय परंपरा दे मुताबक कह देंदे ने ये मनुख बहुत नंगा है बिल्कुल नंगा है। ਨੰਗੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਜੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਢਕਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਆਜ਼ਾ ਢਕਣੇ ਨੇ, ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਢਕੜੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ੀਲ ਸੰਜਮ ਦੇ ਚ ਰਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸ਼ੀਲ ਸੰਜਮ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵੇਗ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਜਹਿਨ ਨਗਨਤਾ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਗਨਤਾ ਭੜਕਾਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਗਨ ਹੈ, ਨਗਨ ਹੈ। ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਨਗਨਤਾ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਗਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਢਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੜਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਢਕਣਾ ਹੈ, ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਰੋਗੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਵਿਕਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਜੋ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਵਾਨਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਤਾਂ ਲਕਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾ ਭੜਕੇ, ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ, ਨਗਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਪਰੀਤ ਨਗਨਤਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਨਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਨਗਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨ, ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰੋਗ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਨਣਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਪੈ ਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀ ਏ ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਹੇ ਸਿਆਣੇ, ਉਹ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਤਨ ਵਿਚ ਖੁਆਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਗ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਜਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਸੰਜਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਨੇ ਸਿਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

फड़े कपड़े फड़े गहने ए भाव भी नहीं पैदा कर सकते कि मैं दर्शन करन ले जाना है। इस वास्ते जे हर थां दी जान दी अपने एक लिबास है अपना है पोशाक है तो सत्संग दे जान दा भी अपना एक लिबास है अपनी एक पोशाक है और ओ पोशाक बार बार ए भावना पैदा करे कि मैं दर्शन करन ले आया संगत दे मैं दर्शन करन ले आया गुरु दे मैं दर्शन करन ले आया एक पावन पवित्र माहौल दे। पर जे कपड़े ऐसे होन ते सारिया की निगाह उसके कपड़िया ते पए तो एक ते सारिया का ध्यान उखड़िया ते दूजा अपने मन विच भाव पैदा होया दर्शन देण दा दिखाण दा। यही कारण है कि बहुत सारी मनुखता धार्मिक लाभ तो वांझी रह जांदी है क्योंकि अपने वस्त्रां दी तरफ ख्याल नहीं रखती। खास करके इस देच इस्त्री जात किसे हद तक बहुत जिम्मेवार है क्योंकि उसका लिबास कई दफा देखण दे चाया सत्संग देच ऐसा हुंदा है जो सत्संग दे मयार ते पूरा नहीं उतरदा। कई दिन दूसरे दिन जद सादा लिबास पहन के दो मिस्से प्रसादे और प्याज दा गंडा थाल देच रख के बिना दासियां तो बिना रथ तो पैदल जद जगत माता गंगा जी पहुंचिया ने अजे वे कदमा दी दूरी है बाबा बुढ़ा जी दी रसना तो निकलिया मां नू वाकई फिक्र आउंदी है बच्चे नू भुख लगी है कल कुछ होर आखिया सी अज कुछ होर आख रहे ने एकदम भज्जे हो गए थाल ले लिया माता जी तो मंजे ते बैठ गए ने मिस्सा प्रशादा तोड़े है बुरकी मूह च पाई है प्याज दा गंडा मंजे दे पावे दे ते रख के जो मुठ नाल तोड़े है आखे ओ लाल मां तेरी कुख तो जन्म लवेगा जो दुष्टां दे सिर इंज बनेगा जिवें मैं इस प्याज नू तोड़े है। ए वाक प्रगट होया दल भंजन गुरु सूरमा वड योधा बहु परोपकारी धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा जन्म आप दी कुखों होया। मीरी पीरी दे मालक तलवार दे धनी और शस्त्रां दे धनी सूर वीरता जिन्हां दे रोम रोम दे चों जो है प्रगट होंदी सी और जिन्हां दे चेहरे तो भक्ति भाव हर वक्त प्रदर्शित होंदा सी ऐसे मीरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा जन्म वक्त दे एक महान फकीर गुरु घर दे एक महान आशिक संत बाबा बुढ़ा जी दे आशीर्वाद नाल होया। पर इस आशीर्वाद दे पिछे एक बहुत वड्डी कहानी छुपी हुई है कि किसे भी संत कोल आना है दर्शन देण लई नहीं दर्शन करन लई। इहदे च कपड़ियां दा बहुत वड्डा योगदान है। कपड़े कुछ ऐसे होंदे ने जो मन दे अंदर ख्याल पैदा करदे ने मैं दर्शन देने ने और कपड़े कुछ ऐसे ने जो पैदा करदे ने ख्याल मैं कुछ भी नहीं मैं ते दर्शन करने ने मैं ते दूजे दे जो है दर्शन करने ने। इस संबंध च एक होर भी बड़ी सुंदर गाथा है भगत कबीर जी दे डेरे एक ऐसी पनहारी सी जो गंगा तो रोज पानी भर के लियांदी है मटकियां दे राहें और सारा दिन प्यासियां दी प्यास बुझांदी है ठंडे जल नाल रसना नाल परमात्मा दा नाम जपदी है अपने मन नू शीतल करदी है ते दूजियां नू शीतल पानी पिला पिला के प्यास बुझांदी है अगलियां दे तन शीतल करदी है। इस तरह मन दे तल ते उसदे सिमरन चलदा रहंदा है तन दे तल ते उसदी सेवा चलदी रहंदी है। सेवा सिमरन दी ए मूर्ति अपना जीवन कबीर जी दे डेरे च इस ढंग नाल बतीत कर रही है। लेकिन एक ऐसी घटना घट गई कबीर जी दे कुछ चेले शिवरात्रि वाले दिन गंगा तट ते की देखदे ने कि वक्त दे बादशाह दी बेगम सिकंदर लोधी दी बेगम हिंदू यात्रियां नू देखण लई आई है कि इत्थे आके की करदे ने
किस तरह दे धार्मिक रस्मों रिवाज नूं ए प्रचलन करदे ने ए अपनांदे ने ए देख रही सी। जिथे ओ धार्मिक रस्मों रिवाज लोकी निभा रहे ने कर रहे ने देख रही है उथे कबीर दे चेले सिकंदर लोदी दी बेगम नूं देखदे ने और मैज इस वास्ते देखदे ने कि इतने कीमती कपड़े और जर्री दा कम है मोती जड़त ने किधरे किधरे नीलम भी चलम चमकदे पैने बस्त्रां दे चों कपड़ियां दे चों। एकदम ख्याल आया उस पनहारी दा जो सारा दिन डेरे दे प्यासियां दी प्यास बुझांदी है ठंडे जल नाल गंगा तो भर के ले जांदी है। सारा दिन जिस दी रसना ते सतनाम दी धुनी चलदी है कबीर पंथियां नूं सतनामी कहंदे ने पर उस दे बस्तर लीरां लीरां ने उस दे कपड़े ते बिल्कुल फटे हुए ने मन दे ते एक शक दा बोझ पै गया ते शक ही सब तो वड्डी मैल है संसे जियो मलीन है कित संजम पोता जाए मेला हिरदा कौन। जो परमात्मा दे प्रति शक नाल भरे होया है निर्मल हिरदा कौन जो परमात्मा दे प्रति विश्वास नाल भरे होया है। जितना किसदा विश्वास वद्दा जा रहा है उतनी निर्मलता वद्दी जा रही है और जितना किसे दा संदेह वद्दा जा रहा है मैल वद्दी जा रही है और संदेह ही संदेह रह जाए विश्वास रह ही ना ऐसा मनुख दुष्ट हो जाता है ऐसा ही मनुख जालम हो जाता है ऐसा ही मनुख चोर हो जाता है ऐसा ही मनुख दुराचारी हो जाता है ऐसा मनुख महान जालम हो जाता है क्योंकि परमात्मा दे प्रति संदेह ही संदेह है और ऐसा मनुख पुनीत हो जाता है भगवंत दा रूप हो जाता है भरोसा ही भरोसा है संदेह तो है ही नहीं केवल भरोसा है। ऐसा मनुख अठे पैर समाधि लीन आउंदा है जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगट आया। ऐसा मनुख जो भरोसे ते भावना नाल भरिया होया अठे पैर समाधमई आउंदा है समाधि लीन आउंदा है अठे पैर प्रभु नाल जुड़िया आउंदा है निर्मलता दी खाण आउंदा है। ओ निर्मलता दी मूर्ति कबीर दे चेले कबीर दे अगों फरियाद करदे ने साडे अंदर संदेह पैदा हो गया की करिए इस पनहारी नु वेख के और सिकंदर लोदी दी बेगम नु वेख के इन्ने कीमती कपड़े इतना कीमती लिबास पता नहीं उसकी जबान चो कदी परमात्मा दा नाम निकलिया भी है कि नहीं। तो कबीर दे बड़े दो कीमती श्लोक ने इस संबंधित कबीर दे श्लोकां दी बाणी आप कहने कबीर हैंगे बाहन सघन घन छत्रपति की नार तासो पटंतर ना पुजे हर जन की पनेहार। जो हरी जन दी पनहारी है सारा दिन हरी दे जना नु पानी पिलांदी है सेवा करदी है इस दे कपड़े इतने महान ने कि उस बादशाह दी बेगम दे कपड़े इस कपड़ियां दे सामने तुच्छ ने। तासो पटंतर ना पुजे हर जन की पनहार तर्क खड़ी हो गई भगत जी वो कपड़े मखमली ने नीलम जड़त ने जर्री दा कम होया उना ते ए कपड़े खद्दड़ देने लीरां लीरां ने टाकियां ने थां थां तो पाटे होए ने सिले होए ने इते चीथड़े ने इन्हां नूं आप कहंदे हो इतने महान ने उस बादशाह दी बेगम दे जिहड़े बस्तर ने बिल्कुल तुच्छ बिल्कुल मामूली। तो कबीर इसका बड़ा सुंदर जो है जवाब दें दे रहे हैं कबीर निरप नारी क्यों निंदी है क्यों हर चेरी को मान मैं हरी दी चेरी नू मान क्यों दे दिता मैं इना चीथड़िया दी इतनी उपमा क्यों कर दिती मैं इतने सादे लिबास दी इतनी महिमा गायन कम कर दिती और इतना कीमती लिबास जर्री नीलम दा कम जिस देच मैं उसनु भंडिया क्यों
मैं उसकी निंदा क्यों की थी। दूजियां दे तर्क अजे जबान ते नहीं आए लेकिन फिर भी कबीर जवाब दे रहे ने समझा रहे ने कबीर निरप नारी क्यों निंदी है क्यों हर चेरी को मान ओ मांग सवारे बिखे को ऐसे मरे हरी नाम। एदे सादे कपड़िया दे हरी दा नाम है उदे भड़कीले लिबास दे प्रदर्शनी है वाशना दी नुमाइश है। उदे कपड़िया नू देख के दूजियां दियां वाशनावां भटक दियां ने भड़क दियां ने प्रगट होंदियां ने। एदे सादे लिबास नू वेख के लोगां दी जबान ते सतनाम दा जप चल रहा है। जिन्हां कपड़िया नू देख के भगवान चेते आवे मैं उसकी उपमा करा या जिन्हां कपड़िया नू देख के शैतान दा जो है चेता चले मैं उदी महिमा गायन करा। वाकई ऐसा है लिबास जिन्हू वेखदे आई शैतानियत प्रगट होंदी है शैतान दे दर्शन होंदे ने और है ऐसा लिबास जिन्हू वेखदे आई भगवान दे दर्शन होंदे ने प्रभु दे दर्शन होंदे ने। खाण पीण दी सावधानी तो बाद जो मनुख अपने वस्त्रां दे प्रति सावधान नहीं धर्म दी चरम सीमा नू छू नहीं सकेगा बुलंदियां नू छू नहीं सकेगा। या इंज कह लो जद भी किसी दे पैर बुलंदियां दी तरफ रागब होंदे ने उहदे पहरावे दी सादगी आनी आरंभ हो जाती है उस दे पहरावे दी कोमलता आनी जो है शुरू हो जाती है। मनुख दी खाण पीण दी कमजोरी तो बाद ए दूसरी कमजोरी है खाना पीना जबान दे रस करके बेमर्यादा चला जांदा है पहनना वाशना करके और अहंकार करके अपने आप नू प्रगट करना है। और जैसे कोई कपड़िया दे राही अपने आप नू प्रगट करदा है उसी तरीके नाल दूसरियां दियां वाशनावां जो है प्रगट आउंदियां ने और ए पहनना धर्म दी दुनिया विच जुर्म हो जांदा है। जगत दा तमाम फकीरी समाज साधु समाज संत समाज जिस सादे कपड़िया विच लिपटिया होया है तो इस दे पिछे कोई फोका कर्म कांड नहीं है इस दे पिछे एक बहुत गहरी सोचनी है एक लंबी विचारधारा है कि मैं ऐसा पहना कि मैं छुप जावा और मैं ऐसा पहना कि मैं प्रदर्शित ना होवा मैं ऐसा पहना कि दूसरे दियां वाशनावां भी प्रदर्शित ना होन। अगर किसी दे कपड़ियां दे राही किसी दी वाशना प्रगट हो रही है तो उदा पहनना बिल्कुल धर्म दी दुनिया च जुर्म है पाप है भावे कानून दी दुनिया जुर्म ना होवे लेकिन धर्म दी दुनिया विच ए पाप है इते गुनाह है। इदा पहनना ही दूजियां दी वाशनावां नू भड़का रहा है ते भड़कियां होईयां वाशनावां किसी वक्त भी किसी दी इज्जत किसी दी असमत लुट सकदियां ने। मौजूदा दौर दा माहौल ऐसा है कि चारों पारे पासे नगनता और अर्ध नगनता दे राही वाशनावां नू प्रदर्शित करन दा एक महान प्रगटावा जो है चल रहा है चारों पासे और इसे नू देख के गुरु नानक दी जो है रसना तो निकल गया सी इत कलयुग दा भाव है नारद नाचे कल का भाव जति सती कहे राखे भाव। मन नारद होवे ते चारों पासे नगनता दी प्रदर्शनी होवे तो फिर जति ते सती लई थां बनानी बहुत औखी है अपने पैर टिकाने बड़े औखे ने। पहनन दे संबंध च धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ए महान उपदेश इस प्रकार है रत्ता पहनन मन रत्ता सुपे दी सतदान। ए जो मन परमात्मा दे नाम विच लीन हो गया है रत्ता गया है मनो मैं एही लाल रंग दी पोशाक पहनी है और लाल रंग दे गूढ़े कपड़े पहनन दा हुण चाव नहीं रहा। सुपे दी सतदान और एही मैं सफेद रंग दे कपड़े पा ले ने जो दानी बिरतियां पैदा हो गई ने परोपकार दा मादा पैदा हो गया है। नीली स्याई करा करनी पैरन पैर ध्यान जो मन विच अपने विकारां दे प्रति रोस पैदा हो गया है एही मैं काले रंग दे कपड़े पहने ने।
सारी दुनिया दे अज भी रोस दा रंग काला मनिया जांदा है। और वाकई जद किसे नूं अपने गुनाह अपने विकारां ते रोस पैदा हुंदा है अंदर काले रंग दी धारी जो है बनदी है। महाराज कहंदे मैं यही काले रंग दे कपड़े पहने ने और जद उन्हां विकारां नूं कट्टण दा ख्याल पैदा हो जाए साहिब कहंदे यही मैं नीले रंग दे कपड़े पहने ने। नीली सिहाई कदा करनी पैरण पैर ध्यान पैरां दी सोहणी जुत्ती मैं केड़ी पाई ए तिल्लेदार जो ध्यान नूं हे प्रभु तेरे मार्ग ते तोरे है। सोहणी जुत्ती पाई हुई है पैर भटके हुए ने पैर गलत मार्ग ते चले हुए ने तो कहा जा सकदे ते पैरों नंगा है। जुत्ती उसदे पैर दे च है जिसकी सुरत ध्यान दे मार्ग ते प्रभु दे मार्ग ते है चल रही है। महाराज कहंदे ने पैरण पैर ध्यान ओ जो ध्यान तेरे विच जुड़िया होया है ते मैं जो चल रहा यही मैं सोहणे तिल्लेदार पैरां दे च जुत्ती पहनी हुई है कमर बंद संतोख का धन जो बन तेरा नाम कमर कसा मैं संतोख दा कीता होया है। ते हुण सब तो वड्डी प्रदर्शनी दी जिहड़ी वस्तु है ओ है धन ओ है जोबन। महाराज कहिंदे मेरे कोल तेरे नाम तो बिना होर कुछ नहीं तेरा नाम ही मेरा जोबन है और तेरा नाम ही मेरा धन है। वाकई नाम दे मिलदे हां जो एक स्वप्न उजागर हुंदा है और नाम दे मिलदे हां जो अंदरों एक बादशाहत पैदा हुंदी है उसे दिन ही पता चलदा है धन किसनू कहंदे ने जोबन किसनू कहंदे ने। सतगुरु देव जी महाराज कहंदे ने सारा जोगन ते सारी धन संपदा फिक्की पै जांदी है जिस दिन ए असली धन मनुख नूं जो है प्राप्त हुंदा है। धन जोबन तेरा नाम बाबा होर पहनण खुशी खुआर जित पै दे तन पीड़िए मन में चले विकार। हे सियाणे मनुख ओ पहनणा जो खुआरिया नूं जन्म देवे मन विच विकारां नूं जन्म देवे ऐसे पहनने नूं इक पासे कर। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ए मूल संदेश उपदेश खान पीण पहनण दे बारे जिस विच बहुत वड्डी सच्चाई है जो इस तल ते संजमी नहीं ओ प्रमात्मा दे मार्ग दा पांदी भी नहीं।

ঘোড়ে পাখর সোয়নে সাখতে বুঝন তেরি বাট তর্কস তীর কমান সাঙ্গ তেগ বন্দ গুণ ধাত বাজা নেজা পতসম পরগট করম তেরা মেরি জাত বাবা ওর চড়না খুশি খুয়ার জিত চড়িয়ে তন পিড়িয়ে মন মে চলে বিকার। এক এসা পাবন পবিত্র গুরু নানক দেব জি মহারাজ দা মহাবাক হ্যায় জিস বিচ জীবন নু বুলন্দিয়াঁ তে কিমেঁ লে যাইয়ে ওর জীবন দে বিচকার রুকাবটাঁ কেড়িয়াঁ কেড়িয়াঁ নে এদি পূর্ণ তৌর তে সূঝ সমঝ ਵਕਤ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਜਗਤ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਜੀਵਨ ਵੱਡਾ ਨੇ, ਜਿਤਨਾ ਪਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਹੀ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਤੋ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸੰਜਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਜਿਤ ਖਾ ਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਜੋ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਜੋ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸ ਦੇਵੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੇਰਸੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਵਰਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਏ ਕਿ ਸਰੀਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੀਰ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਪਿੱਤ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾਣਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਕਦਮ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਪਰ ਪਹਿਨਣਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਨਣਾ ਸਿਰਫ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਨਣਾ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚੇ, ਐਸਾ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਜਿਤ ਪੈ ਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਦੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤਨ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨ ਬੜੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਚਾਰ ਰਹਾਓ ਨੇ, ਚਾਰ ਠਹਿਰਾਓ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਰਹਾਓ ਨੇ। ਚਾਰ ਰਹਾਵਾਂ ਦੇ ਚ ਭਾਵ, ਚਾਰ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰੀਰ,
और शरीर दे खान पीन दा मसला हल होवे तो फिर पहनना, और पहनना भी ऐसा हो जाए कि अपने आप नू नुमाइश करन दा चाव पैदा होवे ते दूजियां दी बिरकती नू भड़कान दा मसला खड़ा होवे। साहिब कहिंदे नहीं, ए भी खुआरियां नू जन्म देंदा है। खान पीन पहनन दे मसले तो जैसे मनुख निश्चिंत होंदा है तो फिर मन दी दुनिया सामने आउंदी है। कहिंदे ने पशु सुखी ने क्योंकि अक्सर प्रकृति उन्हां दियां शरीरक लोड़ां दी पूर्ति कर देंदी है, पर ए जो मन है मनुख दा ए ऐसा है कि शरीरक लोड़ां दी पूर्ति हो जाए और जितनी ज्यादा हो जाए ये उतना ही भयंकर रूप दे मंग करन लग पैंदा है। इत्थे ही मनुखी मन ने बड़े भुलेखे खादे ने और मनुख ने बड़े संपन्न तरह दे मनोरंजन दे साधना नू जन्म दिता है। जिड़े जिड़े देश जितने अमीर ने, जिड़े जिड़े घराने जितने ज्यादा संपन्न ने, देखे उत्थे मानसिक बेचैनी उतनी ज्यादा है। सतगुरु आप भी कहने ने कि वड़े वड़े जो दीसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। महाराज कहने ने दुनिया दे तमाम वड़े मनुखां ते निगाह मारनी। वड़े मनुख कौन? जिन्हां कोल धन संपदा ज्यादा है। को न वड़ा माया वड़ियाई, गुरबाणी दी व्याख्या गुरबाणी जो है करदी है, ए मनुख वड्डा नहीं, ए वडपणा धन ते खड़ा है, ए वडपणा संपदा ते खड़ा है, ए वडपणा प्रभुता ते खड़ा है, सता ते खड़ा है। और जितनी ज्यादा धन संपदा है उतनी ज्यादा प्रभुता है, जितनी ज्यादा सता है उतनी ज्यादा प्रभुता है, और जितनी ज्यादा प्रभुता है महाराज कहने ने उतना ही वड्डा है, और जितना ज्यादा वड्डा है उतनी ही ज्यादा चिंता है। बड़े बड़े जो दीसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। इसनु एक होर ढंग नाल भी धन गुरु नानक देव जी महाराज ने खोले है, जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे भरमंता। जिस को ले धन संपदा ज्यादा है उथे अधिक चिंता है, पर जिथे लोड़ जोगा भी नहीं उथे भटकना है, उथे मन विच भरम ने और उथे बहुत धावना है, उथे बहुत भटकना है। एक थां ते भटकना है और उस भटकन विच भुलना ने, इस वास्ते आम कह दिता है कि गुनाह गरीबी तो जन्म लेंदे ने, गरीबी मुफलसी गुनाहां दी जननी है, गुनाहां दी मां है। मजबूरियां मनुख नूं रसातल दे चले जांदियां, धरातल दे जहर ले जांदियां ने। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने जिथे लोड़ां दी पूर्ति नहीं हो रही उथे ते भटकना है, और जिथे लोड़ां दी पूर्ति तो भी अधिक है उथे चिंता है, बड़ी भयंकर जो है चिंता है। जितने संपन्न देश ने उतने ज्यादा चिंतातुर ने, और जितने संपन्न घराने ने उतने ज्यादा चिंतातुर ने, और जितने ज्यादा चिंतातुर ने उत्थे उतने ज्यादा मनोरंजन दे साधन मुहैया किते जांदे ने, उपलब्ध किते जांदे ने मनोरंजन। गरीब अजे जिस दियां तन दियां ही लोड़ां दी पूर्ति नहीं हुई, अजे तन दा ही मसला हल नहीं होया, अजे तन ते चीथड़ा नहीं है, अजे पेट दे च रोटी नहीं है, इनू मनोरंजन नहीं चाहिए। शरीर सब तो अगे है, अजे शरीर दा मसला हल नहीं होया तो मन पिछे खड़ा है, मन नंबर दो ते खड़ा है। जिस वक्त भारत संपन्न सी और ईरानिया अफगानिया ने तुर्की लोगां ने इनू सोने दी चिड़िया आख्या, उस जमाने च इस देश दे घर घर दे संत पैदा हो रहे सन, देवते पैदा हो रहे सन, देवियां पैदा हो रही सन, धन संपदा बहुत सी, शरीर दा मसला हल हो गया सी, मन दे मसले नू परमात्मा दे नाम नाल हल कर रहे सन, प्रभु चिंतन नाल हल कर रहे सन। चाहे थे राजकुमार सिद्धार्थ होवे, चाहे महावीर होन, आखिर राजघरानियां दे फरजंद सन,
इन्हों ने भी अपने मानसिक मसले प्रभु चिंतन नाल हल कीते, आत्म अभ्यास नाल जो है हल कीते। करीबन करीबन इस देश दे राज घरानियां दे चों धर्म दी सुगंध फैली, धनाढ़ मनुख प्रभु दे मार्ग ते चले, और जब धनाढ़ चल पैन, सताधारी चल पैन, तो दूसरा वर्ग उन्हां दे पिछे चल पैंदा है। स्वाभाविक है, अक्सर छोटा वड्डे दी नकल करता है, निर्धन धनवान दी रीस करता है। तो जो थोड़े जिया भी तलते पछड़े सन, दरम्याने सन, उन्होंने राज घरानिया दे ए जो राजकुमार सन इन्हां दी नकल की थी, राजिया दी नकल की थी, राजे जोगी बन रहे ने, राजकुमार संत बन रहे ने। तो इस देश दे ऐसी हवा चली, घर घर दे देवी, घर घर दे देवता, गली गली दे संत, और अज तक वो पुरानी हवा दे कुछ झोंके मौजूद ने कि सारी दुनिया च अज भी कहंदे ने हिंदुस्तान एक धार्मिक देश है, हिंदुस्तान देवी देवतावां दा देश है, हिंदुस्तान गुरु पीर पैगंबरां दा देश है, जोगियां दा देश है, आत्म ज्ञानियां दा देश है। पर ए आत्म ज्ञानियां दा देश सी, अज नहीं, ए ऋषि मुनियां दा घराना सी, अज नहीं। संपन्न लोगां ने अपना पूरा समा, अपनी पूरी शक्ति आत्म अभ्यास दे खर्च की थी, तो सहजे सहजे की होया, धन दी फिक्र ना की थी, संपदा दी फिक्र ना की थी। संत पैदा होंदे गए, ऋषि मुनि पैदा होंदे गए, अवतार पीर पैगंबर पैदा होंदे गए, तो धन संपदा दी ते फिक्र ना की थी, मुफलसी भी पैदा होंदी गई, और मुफलसी चरम सीमा ते पहुंच गई। और अज असी देखदे आं कि हिंदुस्तान अज उन्हां देशां दी तरफ निगाह करदा है जिथे संपन्नता है, ते जिथे संपन्नता आ गई है वो आत्म अभ्यास लई हिंदुस्तान दे दरवाजे खटखटा रहे ने, वो योगियां दे आश्रम लभ रहे ने, वो आत्म अभ्यास दे केंद्र लभ रहे ने। संपन्न हो गया अमेरिका, योगी शब्द दी उत्थे महिमा वध गई है, योग दी महानता वध गई है, आत्म अभ्यास दी उमंग ते तरंग वध गई है, लेकिन धन संपदा दी तरंग ते उमंग हिंदुस्तान दे च वध गई है। अज धन दी खातर इस देश दे धर्म नू छोड़िया जा सकदा है, पर उस देश दे च ऐसा है कि धर्म दी खातर धन नू छोड़िया जा सकदा है। संपन्न घरानिया दे बच्चे हिपी बन गए, छोड़ गए सारे ऐशो आराम नू, हर तरह दे सुख नू, और उन्होंने बुलंद बांग कह दिता आत्मक चैन चाहिए, सुकून चाहिए, शांति चाहिए, प्रभु चाहिए, आत्म प्रकाश चाहिए। तो खैर जैसे जैसे शरीर दा मसला हल होवे, मन बड़े भयंकर रूप दे सामने आउंदा है, और शरीर पहले इदा मसला पहले हल करना पैंदा है, और इदा मसला है खाना पीना पहनना। पर ए संजम दे च ना होवे तो खाना पीना भी तन नू रोगी कर देगा, मन नू विकारी कर देगा, ए पहनना अगर संजम दे च ना होवे, मर्यादा दे च ना होवे, तो ए भी तन नू रोगी कर देगा, मन नू विकारी कर देगा। और तन दिया सारियां लोड़ां पूरियां हो जान, ते मन जद बड़े भयंकर रूप दे सामने आवे, तो हुण इस मन दी वास्तविक लोड़ की है। करीबन करीबन दुनिया दे अजोके सियाने मनुखा ने ऐसा समझ लिया, मनोरंजन मन दी लोड़ है, नाटक चेटक तरह तरह दे रंग तमाशे रंगीनिया, इस तरह दे मनोरंजन दे साधन संपन्न घरानिया दे नवे तो नवे पैदा हो रहे ने। लेकिन मन दी एक अपनी एक अवस्था है, जिस चीज नू एक दफा वेख लवे ओनू पुराना कर देंदा है, ते पुराने दी मन परिक्रमा नहीं करता, मन अगे जांदा है, मन गतिमान है, इदी गति बड़ी तीक्ष्ण है, और ये रुकदा नहीं, ये लंघ जांदा है, और लंघ के हर चीज नू पुराना कर देंदा है, हर वस्तु नू पुराना कर देंदा है,
रंग पुराने हो जाते हैं, रूप पुराने हो जाते हैं, महफिलां पुरानियां हो जांदियां ने, तस्वीरां पुरानियां हो जांदियां ने, कहानियां पुरानियां हो जांदियां ने, संगीत दियां धुनां पुरानियां हो जांदियां ने, माहौल पुराना हो जांदा है। अज देखदे हां संपन्न घर जो है देशां विच ते कोई वध तों वध 2 साल ही मकान विच रहिंदा है, 3 साल मकान बदल देंदा। नौबत इत्थे तक आ गई, परिवार बदलने ने, पति बदलना, पत्नी बदलनी है, पर हुण कौन दसे? ए जो मनोरंजन है ए मन दी मंग नहीं, ए ते इस तरह है जैसे रोंदे हुए बच्चे नूं छणकणा दे के वक्ती तौर ते बुलाया जा सकदा है, पर उते दुध लई रो रहा है, उते मां लई रो रहा है। वक्ती तौर ते ए छणकणा दे के बुलाया जा सकदा है, परचाया जा सकदा है, लेकिन फिर भी उसने छणकणा सुट देना है। हथ मां दी तरफ पसारने ने, दुध दी मंग करनी है। हू बहु देखदे पया संपन्न घरानियां दे लोग इन्हां छणकणियां नूं सुट रहे ने, और कहने नहीं अस्थाई सुकून चाहिदा है, मसनोई नहीं, दायमी आनंद चाहिदा है, अस्थाई आनंद चाहिदा है, अस्थाई खेड़ा चाहिदा है। तो ओ जड़ा अस्थाई खेड़ा है, ओ ते जो अस्थाई है, जो टिकिया होया है, जो दायमी है, जो हमेशा है, उस तो ही प्राप्त हो सकदा है, और ओ ते केवल परमात्मा है, ओ ते केवल ईश्वर है, उस तो ही लग सकदा है। तो मनोरंजन दे जेड़े जेड़े साधन उस दौर विच विकसित होए सन, सतगुरदेव जी महाराज उसका जिक्र करदे ने। सुंदर घोड़ा होवे, सोने दी काठी होवे, लगाम भी जर्रीदार होवे, और कृपान तलवार गात्रे वाली पहनी होवे, तीर कोल होवन, पत्था होवे, और तरह तरह दियां खुशबुआं होवन, और इस सब कुछ ला के घोड़े ते असवार होके निकलना एक मनोरंजन सी, एक मन दी लोड़ सी। नेजेबाजी एक खेड़ा, इस तरह दे मनोरंजन वक्ती तौर ते मन दा बहलावा सी, उस दौर विच विकसित होए सन। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने नहीं, मन दी ए लोड़ नहीं, और इस लोड़ नूं किवें पूरा करना है? धन गुरु नानक देव जी महाराज दसदे ने, घोड़े पाखर सोयने साखत बूझण तेरी वाट। हे परमात्मा, जो मैं तेरा रस्ता जान लिया है, जो मैं तेरे रस्ते नूं समझ लिया है, मानो ए मैनू घोड़े दी प्राप्ति हो गई है, और ऐसा घोड़ा जिहदे ते जत सत दी काठी पई हुई है, सोने दी काठी पई हुई है। कहिंदे ने ए कोई लाजमी नहीं कि मनुख नूं अपने घर दे ही रस्ते दा पता होवे, जो इट्टां ते पत्थरां दा बने होया मकान है और उस दे च आ गया है। अगर एही उसका घर है तो एक दिन इसे ही घर चो 4 मनुख चुक के लै जांदे ने, और काडो काडो होई सतगुरु दी बाणी कहिंदी कड्डो कड्डो। तो एक गल स्पष्ट हो गई, इह ते घर घर नहीं सी, सरां सी, इत्थे ते सी प्राउणे सी मेहमान, घर ते कोई होर है। बाबा फरीद उसका जिक्र करदे ने, गोर निमाणी सड करे निघरिया घर आओ, सरपर मैथे आवणा मरनो ना डरियाओ, तन दा घर शमशान है, मन दा घर भगवान है, तन दा घर कब्र है, मन दा घर खुदा है। तो बाबा फरीद कहिंदे घर ते आवाजां पिया मारदा है, ऐ तन कबर आवाजां पिया मारदा है, कबर तैनू बुला रही है, गौर निमाणी सड करे, गौर कबर नू कहिंदे ने, गौर निमाणी सड करे निघरिया घर आओ, सर पर मैथे आवणा मरनो ना डरिया, मौत दा भय दूर कर, ऐ तन तेरा घर शमशान ही है, ऐ तन तेरा घर कबरी है, पर मन तेरा घर खुदा है, तेरा घर शमशान नहीं है, तेरा घर भगवान है। अपने घर दी चिंता कर, और उस घर दे रस्ते दा नहीं पता। और असी देखदे हां सारी जिंदगी
ਲੋਕ ਕਈ ਦਫਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੇ ਮੇ ਕਟ ਗਈ ਕੁਛ ਗੁਨਾਹੋਂ ਮੇ ਕਟ ਗਈ, ਰੋਤੇ ਮੇ ਕਟ ਗਈ ਕੁਛ ਆਹੋਂ ਮੇ ਕਟ ਗਈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੇ ਚਲਨੇ ਵਾਲੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੇ ਜਾ ਲਗੇ, ਰਾਹੇਂ ਬਦਲਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਰਾਹੋਂ ਮੇ ਕਟ ਗਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਔਰ ਰਸਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਸਤਿਆਂ ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਇਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਸਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਬਣੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਬੌਧ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ, ਗੁਰੂ ਮਤ, ਸਿੱਖ ਮਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਬਣੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਰਸਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਸਤੇ, ਇਸਲਾਮ, ਈਸਾਈਅਤ, ਯਹੂਦੀ, ਪਾਰਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਆਉਂਦੀ ਏ ਵਿੰਗੇ ਟੇਡੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਕਤਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਤਾਂ ਵਿੰਗਾ ਟੇੜਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿੰਗਾ ਟੇੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਹੋਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੰਗੇ ਟੇੜੇ ਰਸਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਚ ਹੀ ਭਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਚ ਬਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਚ ਬਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਹਿੰਦੂ ਮਤ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ, ਜੈਨ ਮਤ, ਬੌਧ ਮਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਚ ਬਣੇ ਨਿਕਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਢੰਗੀ ਚਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਟਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਭਟਕਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੋ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਰਸਤਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਭਟਕ ਗਏ। ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਕੌਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਜਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਪਰੀ ਬਹੀਰ, ਇਕ ਔਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੇ ਚੜ ਰਹੋ ਕਬੀਰ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਤਰ ਚੜਾਕ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਪਏ, ਬੜੀ ਭੀੜ ਚੱਲ ਪਈ, ਤਾਰਕਿਕ ਬੰਦਾ, ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੈਸੇ ਰਸਤੇ ਚ ਔਗਟ ਘਾਟੀ ਆਈ, ਪਹਾੜ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਾੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਟਕਣ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਤੋ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਟਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਬਣੇ। ਇਹ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਭਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਆਲਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੇ ਚਲਨੇ ਵਾਲੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੇ ਜਾ ਲਗੇ, ਰਾਹੇਂ ਬਦਲਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਰਾਹੋਂ ਮੇ ਕਟ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਸਤਾ ਕਠਿਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਉਥੇ ਰਾਸਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮੈਦਾਨੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਔਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੇ ਚੜ ਰਹੋ ਕਬੀਰ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਟ ਔ ਘਟ ਡੂੰਗਰ ਘਣਾ, ਇਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ, ਰਮਈਏ ਸਿੰਘ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਮੋੜਾ। ਔਘਟ ਘਾਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤੇ ਚੜਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚੜਾਈਆਂ ਤੇ ਦਮ ਫੁੱਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਬਦਲਦਾ ਉਹ ਭਟਕਿਆ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੱਕੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਇਕ ਦੇ ਭਟਕਣ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਟਕਦੀ ਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਹੈ,
हे प्रभु जिड़ा मैं तेरे रस्ते नु जान ले तेरे मार्ग नु जान ले घोड़े पाखर सोयने साखत बूझण तेरी वाट मैं जान ले तेरा रस्ता की है उसका रस्ता की है जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने तेरा नाम जपना ही तेरे राह ते चलना है तेरे मार्ग ते चलना है बाकी सब भटकना है नाम बिना जेता व्यवहार जो मृतक मिथ्या सिंगार नानक के घर केवल नाम सतगुरु देव जी महाराज कहंदे ने साडे घर विच ते केवल नाम दा ही जप है और कुछ भी नहीं और यही एक मार्ग है यही सही मार्ग है बाकी सारी दी सारी जो है भटकना है उदे रस्ते नु बुझना की है उदे नाम नु जपना और नाम जपन विच पूरा भरोसा होना कि परमात्मा तक पहुंचने दा यही मार्ग है यही रस्ता है तो साहिब कहंदे ने जिहड़ा तेरे रस्ते नु जान लिया तेरे वाट नु समझ लिया बस यही साडे वास्ते घोड़िया दी असवारी है घोड़े पाखर सोयने साखत बूझण तेरी वाट तरकस तीर कमान सांग तेग मन गुण धात हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे अनंत गुणा नु जो धारण कर लिया है यही साडे कोल भत्था है उस दे तीर ने यही साडे कोल कमान है और यही तेग बंद जिस दे तलवार रखी दिए उन्हों कहने तेग बंद गात्रा यही साडे कोल ओ गात्रा है और यही साडे कोल तलवार है केड़ा जो तेरे गुण साडे कोल ने ए जो ज्ञान आ गया ए जो शील आ गया है ए जो संजम आ गया है ए जो प्रेम आ गया है ए जो समदृष्टि आ गई है ए जो हृदय निर्वैर हो गया है निर्भय हो गया है यही ते साडे शस्त्र ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज भी इसका बड़े सुंदर ढंग नाल जिक्र करते ने आम कहा जाता है अवतारी पुरुषां कोल कुछ ना कुछ शस्त्र रहे ने मुहम्मद साहब दे हथ दे तलवार सी अपने देश नू देखिए श्री राम दे कोल धनुषबाण सी द्वापर युग दे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण जी कोल सुदर्शन चक्र सी किसी तारकिक ने गुरु अर्जन देव जी महाराज नू कह दिता तुसी पंजवें गुरु नानक दी गद्दी दे वारस कलयुग दे अवतारी पुरुष थोड़े कोल कोई शस्त्र नहीं है तो महाराज कहण लगे है वेखो गरीबी गदा हमारी खन्ना सगल रेण छारी इस आगे टिके ना को विकारी गुरु पूरे ए गल सारी साडे कोल गदा है गरीबी दी विनम्रता दी निर्माणता दी साडे कोल खंडा भी है दुधारी केड़ा जो सारिया दे चरणा दी खाक बन गए हर एक दे पैरां दे थल्ले हो गए सानू किसे दे सिर दे उपर बैठन दा शौक नहीं सानू ते कदमां विच बैठन दा शौक है सानू ते चरणा दे थल्ले बैठन दा शौक है चोटी दे धार्मिक मनुख दी चाहत आउंदी है सारिया दे कदमां दे थल्ले बैठना है चोटी दे राजनीतिक दी एह चाहत आउंदी है कि सारिया दे सिर ते बैठना है राजनीति सिर ते बैठना है धर्म नीति कदमां दे जो है बैठना है तो महाराज कहंदे ने इह जो सारे गुण तेरे प्राप्त हो गए ने इह साडे कोल शस्त्र ने और गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने विनम्रता साडे कोल गदा है सारिया दे चरणा दी जो खाक बन गए इह साडे कोल खंडा है तरकस तीर कमान सांग तेग बंद गुण धात वाजा नेजा पत स्यों प्रगट करम तेरा मेरी जात साडी इज्जत साडी मान मर्यादा साडी जात साडी पात एक ही है तेरी बख्शिश ए जो तेरी रहमत हो गई है ए जो तेरी बख्शिश है तेरी बख्शिश ही साडी जात है तेरी बख्शिश ही साडी इज्जत है तेरी बख्शिश ही साडी मान मर्यादा है बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर जित चढ़िए तन पीड़िए मन में चले विकार होर असवारियां होर मनोरंजन दे साधन साहिब कहंदे ने हे सियाणे मनुख सब खुआरियां नू जन्म देंदे ने सब दुख संताप नू जो है जन्म देंदे ने मन विकारी हो जांदा है तन रोगी हो जांदा है ऐसे मनोरंजना नू एक पासे करना है ऐसियां असवारियां नू एक पासे करना है बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर जित चढ़िए तन पीड़िए मन में चले विकार
घर मंदर खुशी नाम की नदर तेरी परवार, हुक्म सोई तुद भावसी होर आखण बहुत अपारे, नानक सच्चा पात साओ पूछ न सकरे बिचारे, बाबा होर सोना खुशी खुआरे जित सुत।

धन गुरु नानक देव जी महाराज श्री राग दे पावन पवित्र वाक दे चौथे रहाओ दे जो मुख गल साडे सामने रखते ने खान पीन का भी मसला हल हो जाए, पहनण का मसला भी हल हो जाए, सारे मनोरंजन दे साधन भी प्राप्त होन, लेकिन प्राणा दे एक प्यास रह जाती है परिवार की, मेरा परिवार भी होवे। मनुख समाजिक प्राणी है, तनहा नहीं रह सकता, कल्ला नहीं रह सकता। पशुआं दी कोई समाजिक जिंदगी नहीं है, और पशु अकल्ले तनहा जिंदा रह सकते ने। और अक्सर देखा गया बेशतर पशु तनहाई दिच रह जाते ने, और तनहाई उना ले कोई तनहाई नहीं, मन दी दुनिया ही नहीं है, सिर्फ तन दी दुनिया है, लोड़ां दी पूर्ति हो गई, मस्त होके सौ जांदे ने। मनुख मानसिक तल ते जीण वाला है और समाजिक प्राणी है, इसनू परिवार भी चाहिदा है, और परिवार विच मां बाप पत्नी तियां पुत्र भरा मित्र, और इस तरीके नाल तीन प्रणालियां समाजिक रिश्तियां दियां गिणियां गईयां ने, दादकियां दे रिश्ते, नानकियां दे रिश्ते, सौरियां दे रिश्ते। तीन रिश्ते चलदे ने एक पिता तो, एक मां तो, एक पत्नी तो। पत्नी नूं एक पासे कर दईए, सौरियां दे कोई रिश्ते नहीं। मां नूं एक पासे कर दईए, नानिहाल बचदा ही नहीं। पिता नूं एक पासे कर दईए, दादकियां दी प्रणाली चलदी ही नहीं। समाजिक रिश्तियां दियां ए तीन शाखावां ने, दादके, नानके, सौरे। तो चूंकि मनुख समाजिक प्राणी है, इनू दादकियां दे रिश्ते चाहिदे ने, इनू नानकियां दे रिश्ते चाहिदे ने, इनू सौरियां दे रिश्ते चाहिदे ने। मनुख दे कोल बहुत सारे साजो समान दे माण दे नाल नाल रिश्तियां दे भी माण हुंदा है, रिश्तेदारां दा भी माण हुंदा है, संबंधियां दा भी माण हुंदा है। एह गल वखरी है कि इन्हां रिश्तियां विचों किहड़ा व्यक्ति उस नूं अधिक प्यारा है, ज्यादा प्यारा है, पर फिर भी इन्हां तीन रिश्तियां दी प्रणालियां दी अपनी प्रधानता मनुखी जगत विच बनी आई है और है। नानके, दादके, सौरे। सिख जगत दे महान दार्शनिक संत भाई साहब भाई गुरदास जी वो कहने हे परिपूर्ण परमात्मा, मैं तेरे रिश्ते तो सारे रिश्ते कुर्बान करदा, सदके करदा। बड़े सोहने ढंग नाल उन्होंने एक कवित विच इन्हां रिश्तियां दी गिणती कीती है और अपना मनोवेग अपना मनोभाव प्रदर्शित कीता है। नहीं ददसार पिता पितामा पर पितामा सजन कुटुंब सुत बांधव ना भराता है। पिता पिता दा पिता दादा, फिर उसका पिता परदादा, फिर उसका पिता लकड़ दादा। इस तरीके नाल ए दादके घरानिया दे रिश्ते भरा ने पुत्र ने, ए सारे दा सारा दादका कहलांदा है। आप कहने नहीं ददसार पिता पितामा पर पितामा सजन कुटुंब सुत बांधव ना भराता है। नहीं ननसार माता पर माता वृद माता मामी मामू मासी मौसा विविध विख्याता है। नानकियां दे सारे रिश्ते चलदे ने मां तो, मां मां दी मां नानी, फिर उसकी मां प्रणानी, मामे मामिया मासी इत्यादक मासड़ इत्यादक, ये सारे रिश्ते मां करके ने। भाई जी कहंदे ने नहीं ननसार माता पर माता वृद माता मामी मामू मासी मौसा विविध विख्याता है। नहीं ससुरार सास ससुर सारो ओ सारी नहीं ब्रितीसर जाचक ओ ना दाता है। पत्नी तो जड़े रिश्ते चलते ने,
साला है, साली है, सस है, सौरा है, ये सारे पत्नी तो चल देने। मैं फिर अर्ज करा, पिता नु एक पासे करिए, दादकियां दी प्रणाली खत्म, मां नहीं तो नानकियां दा पसारा खत्म, पत्नी एक पासे तो कौन साला कौन साली, कौन सस ते कौन सौरा, ए रिश्तियां दी प्रणाली टूट जांदी है। खड़ी है सौरियां दी प्रणाली पत्नी ते, खड़िया है दादकियां दा संसार पिता ते, नानकियां दी दुनिया मां ते। भाई साहब भाई गुरदास जी चौथी पंक्ति देच अपना मनोभाव इंज प्रदर्शित कर देने, नहीं ससुरार सास सुसर सारो ओ सारी, नहीं ब्रितीसर जाचक ओ न दाता है, असन बसन धन धाम काहू में न देखियो, जैसे गुरसिख साध संगत को नाता है। गुरु दी संगत च बैठ के सुरत नू जड़ा प्रभु नाल जोड़ लेना है, ये जो रिश्ता है ये जो नाता है, भाई साहब कहते दुनिया च कोई ऐसा नाता नहीं, पर इस दी तह दिच थोड़ा ते जो है जाना पेगा। आखिर ए संबंध परिपूर्ण परमात्मा दे बनाए हुए ने। तियां पूत सब हरके किए, सबना को संबंध कर दिए, फिर मात पिता सुत बंधप भाई।

한다는 걸 원칭지 말아 하이다. 혹은 렛 베아리 모지코 시크 베아라나 दरअसल सिख का स्वरूप ही ता बनता है जे उस को रहनी हो गए रहनी दो तरह की मानसिक ते शरीरक मानसिक रहनी है बाणी दा पाठ जपजी साहब जाप साहब सवैये चौपाई आनंद साहब और जितनी बाणी पढ़ सके मूल मंत्र दा जप एक ओंकार तो लेके गुरु प्रसाद तक वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र दा जप दो वक्त 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा या जितना उसको समय ये मानसिक रहत है तन दुते पंच ककार ये शरीरक रहत है मन करके सिख बने तन करके ये सिख बने तो मानसिक ते शरीरक रहत चाहिए ना मानसिक रहत होवे ना शरीरक तो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहंदे ने ए सिख मैनू प्यारा ने क्योंकि इसने पाहुल नहीं ली और रहनी नहीं रखी धरे केस पाहुल बिना देखी मूरख सिख तिसको दर्शन ना है मेरा पापी त्यागे बिख रहत नामे इस तरह के बोलने ज्यो काहू पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो जिवे कोई खोते नु इशनान करा के उदे गल विच फुलां दी माला पावे और उदे शरीर दिते चंदन इत्यादिक लावे ज्यो काहू पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो तै की कर ता की शोभा नाही हासी होए होत जग माही अगर इस तरह करके कोई खोते नु बाजार विच ले आवे लोकी उस नु वड्याण नहीं लगे बल्कि हसन गए उसते भई लै खोते नु इशनान करा के चंदन ला के गले विच फूलां दी माला पवा के लेके आ गया तै की कर ता की शोभा नाही हासी होए होत जग माही ये प्रमाण किस प्रथाई दिता जा रहा है अगां फरमान कर देने तिम कुरतियन केस रखाए कहो कैसे ओ शोभा पाए इसे तरह जो कुरैती है उसने केस रखे हुए ने मानो खोते नु इशनान कराया गया फुलां दी माला पवाई गई है चंदन आदक लाया गया बस खोते ही रखोता है सिर्फ सिर्फ केस ने ना मानसिक रहत ना बाकी शरीरक रहत भाई साहब भाई नंदलाल दा बड़ा सुंदर प्रमाण निशाने सिखी ई पंज हरफ का जिथे हृदय दी बनावट बनेगी बाणी नाल मूल मंत्र दे जप नाल गुरमंत्र दे जप नाल उथे शरीर सिखी दा स्वरूप पेश करेगा इना पंच ककारा नाल कक्का के

सहजे सहजे अज ते सारी दुनिया ने धारण कर लिया है, भावे ओ रूप ना होवे जो कलगीधर ने सानो दिता है, पर कुछ ना कुछ कछहरे दी बनावट जैसा ही कछहरा सारी दुनिया ने अज धारण कर लिया है, और इसनु शरीर दी और मन दी एक खास लोड़ समझ लिया गया। कंगा केसां दी सफाई लई ते है, लेकिन इस दे नाल जप तप करन तो बाद जो थोड़ी जिया दिमागी थकावट या शरीरक थकावट हो सकती है, इस कंगे दे बार बार सिर ते फेरन नाल मस्तक हौला हो जांदा है और थकावट दूर हो जांदी है और नाले केस समर जांदे हैं। किरपान ठीक है, आज हाइड्रोजन बम तो भी मनुख अगे लंगे, और कुछ तर्कशील ऐसा कहंदे ने कि इस एटम बम हाइड्रोजन बम दे जमाने विच ये निक्की जी किरपान की मैंने रख दी है, जो सिख जगत ने पहनी हुई है, जो कलगीधर ने दिती है और पहनना लाजमी करार देता है। दरअसल ये किरपान एक प्रतीक है, मन दे ते इसका असर है कि तू केवल संत नहीं सिपाही भी है, केस संत दा स्वरूप पेश कर देने, किरपान सिपाही दा रूप पेश कर दिए। इस तरह धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मनुख नो संत सिपाही बनाया। गुरु नानक देव जी महाराज तो लेके धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज तक यतनशील रहे मनुख नो संत बनाने विच। इसे ही संत नो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिपाही बनाया। जद कोई संत सिपाही बनता है उसके हथों मजलूम दी रक्षा होती है, मुल्क दी तामीर होती है, कमजोरां दी उसारी होंदी है। और जद कोई केवल सिपाही है संत नहीं, उसके हथ मजलूमां दी गर्दन कटते ने। चीन दे एक प्रसिद्ध संत ने कहा है, सिपाही दे सैनिक दे जिथे पैर जम जांदे ने टिक जांदे ने जमीना उत्थे उजड़ जांदियां ने बर्बाद हो जांदियां ने, सिपाही दे कदम बर्बादियां नूं जन्म देंदे ने जन्म देंदे ने बर्बादियां। अगर सिपाही संत पहले है तो उदे कदमां नाल तामीर होंदी है मनुखता दी, उदे कदमां नाल धरती जरखैज होंदी है। ठीक आख्या है चीनी संत कन्फ्यूशियस ने कि जिथे रुक जांदे ने सैनिक दे पैर सिपाही दे पैर उत्थे कंडे ही कंडे रह जांदे ने, उजाड़ ही उजाड़ रह जांदा है, बर्बादियां ही बर्बादियां जन्म लैंदियां ने। पर जिथे ओ सिपाही जो संत पहले है उहदे कदमां दे राही तामीर आउंदी है, उहदे हत्थां दे राही उसारी आउंदी है और धरती हरी भरी आउंदी है, मनुख नूं इंसाफ मिलदा है, कमजोर दी रक्षा आउंदी है और जालम दे पैर रुकदे ने। तो इस तरह धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने संत नो सिपाही बनाया, और सिपाही दा प्रतीक है शस्त्र, तो शस्त्र पहना देता। किरपान इस वास्ते पहननी है कि इस छोटी जी किरपान नाल कोई मैदान जंग विच लड़ना नहीं, पर ये छोटी जी किरपान एहसास करांदी रहे कि असी सिपाही हां सिपाही हां, और इस तरह दा अंदर वीर रस बनिया रहे तो फिर मनुख अपनी भी रक्षा कर सकता है, कौम की भी रक्षा कर सकता है, देश की भी रक्षा कर सकता है, और किसी तरह का भी कोई हथियार होवे उस नाल रक्षा करेगा। लेकिन सिपाही होने का भाव तो बनिया रहे, अंदर वीर रस ते बनिया रहे, वो तो ताही हो सकता है कि हर वक्त मनुख ने कोई शस्त्र पहने होवे। तो इस तरह किरपान पहनन की धारण करने की सानू ताकीद की गई। भाई साहब भाई नंद लाल कहने निशान है सिखी ई पंज हरफ काफ के हर गिज ना बाशद ई पंज माफ कड़ाकार दो काच कंगा बिना बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। अज दे साइंस युग दे

रथ अठसठ तीर रथ घूमन वाणी मां दा दिल तोड़ के प्यो दी बेदबी करके अगर कोई बंदा कथा सुनन वास्ते जाए भाई साहब कहिंदे ने कथा दे भेद नूं नहीं समझ सकेगा। इह ते भुल गया इह जो मां तैनूं मिली है इह मां नहीं इह परमात्मा ही मां दे रूप च तैनूं मिले है। परमात्मा ही ममता लुटा रहा है परमात्मा ही प्यार दे रहा है। अगर परमात्मा ने प्यार देना है ममता करनी है तो किस रूप च करे वह मां दे रूप च कर रहे। परमात्मा ने हमदर्दी जतानी है तो किस रूप दे जतावे वह पिता दे रूप च जतावे वह पिता दे रूप च प्यार दे रहा है। इस वास्ते भाई साहब कह रहे हैं कि पिता दा दिल तोड़ के जो तीर्थां ते भरमण पिया करता है मां नूं ठोकर मार के जो कथा सुनने की कोशिश पिया करता है भाई साहब कहने रब्बी राज नूं ओ नहीं समझ सकेगा। मां प्यो पर हर करे तीरथ अठसठ तीरथ घूमण वाणी ते हुण ऐसा होवे कि माता दे तन दे कपड़े ना हो पिता दे पैरां दी जुत्ती ना होवे ते इह बहुत वड्डा दानी बनिया फिरे। भाई साहब कहिंदे ने मां प्यो पर हर करे दान बेईमान अज्ञान पराणी। मां नूं ठुकरा के प्यो दीआं जरूरतां नूं ठुकरा के जिहड़ा बहुत वड्डा दानी बनन दी कोशिश कर रहा है भाई साहब कहिंदे ने परले दर्जे दा अज्ञानी पुरुष है और बेईमान। कारण की इन्हां तमाम रिश्तियां दे चों ही ते परमात्मा दा रिश्ता लभना सी ईश्वर दा रिश्ता लभना सी। इस वास्ते साडे देश दे कोशिश कीती गई कि पहले घर नूं मंदर बनाया जाए घर मंदर घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा वसवा। घर नूं ही मंदर बनाना तो घर मंदर तां बन सकदा है कि मां दे च परमात्मा दी झलक मिले पिता दे च परमात्मा दा स्वरूप दिखाई देवे भरावां दे च अकाल पुरख दी हमदर्दी दिखाई देवे मित्रां दे च परमात्मा दी नेड़ दिखाई देवे और पत्नी दे च परमात्मा दी पत ते शफकत दिखाई देवे तां ही घर मंदर बन सकदा है। बड़ी कोशिश कीती साडे देश दे ऋषि मुनियां ने कि जिहड़ी पत्नी है इह पति नूं परमात्मा आखे ते जो पति है पत्नी नूं देवी आखे। हुण एक नूं देवी दिखाई देवे ते एक नूं परमात्मा दिखाई देवे घर ते मंदर ही बन गया। आखिर मंदर दे च की हुंदा देवते हुंदे ने देवियां हुंदियां ने पति नूं पत्नी देवी दिखाई देवे और पत्नी नूं पति देवता दिखाई देवे एक परमात्मा करके बुलावे एक देवी करके बुलावे घर मंदर बन गया। पर जे इस तो उल्ट गल होवे पति पत्नी नूं भूत दिखाई देवे और पत्नी पति नूं डायन दिखाई देवे घर ते नरक बन गया। होर किहड़े नरक दे जाण घर ही दुखां दा अखाड़ा बन गया। घर नूं मंदर बनाउण दी प्राचीन समें तो इह कोशिश सी परमात्मा पहले घर दे च दिखाई देवे तां ही बाहर दिखाई दे सकेगा। जिहनूं घर दे च नहीं दिखाई दित्ता उहनूं बाहर किस तरह दिखाई देवेगा। तमाम रिश्तियां दे चों परमात्मा दी झलक वेखनी है इस तरह दी कोशिश भारत दे ऋषि मुनियां ने कीती और जोर दिता कुछ रस्ते दे चों भी मनुख लंघदा जा रहा होवे तां राम राम बुला देना सत श्री अकाल बुला देना अजनबी नूं हरे कृष्ण बुला देना। राम राम बुलाउण दा मतलब की सी एक दूजे दे अंदर राम नूं वेखना एक दूजे दे अंदर सत नूं ते अकाल नूं वेखना ते जद एक दूजे दे अंदर परमात्मा ही दिखाई दे रहा है ते झूठ किस दे अगों बोलना धोखा किस नूं देना। बहुत गहरी सभ्यता साडे देश दे च पनपी सी जो पश्चिमी सभ्यता ने किसी हद तक बर्बाद कर दिती। इस वास्ते हुण जे सवेरे दे वक्त दो मनुखां दा मिलाप हो जाए वो गुड मॉर्निंग कर छड़ देन शाम नूं गुड इवनिंग कह देंदे ने गुड नाइट कह देंदे ने पर कौन पुछे इस दे च कोई धार्मिकता नहीं है इस दे च कोई रब्बी रस नहीं है उस दे च कोई हकीकी आनंद नहीं है इस दे च कोई परमात्मा दी झलक नहीं है। हे मनुख तू उस परम शक्ति नूं अजनबी दे च भी देख राही दे च भी देख परिवार दे च भी देख संसार दे च भी देख तां ही तू उस परमात्मा नूं हर पहलू दे च देख।

0: जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके का स्वार्था, दाल सीधा मांगू घीओ हमरा खुशी करै नित जियो, पनिया साधन नीका अनाज मांगू सत सीका। पनिया का अर्थ जोड़ा, साधन का अर्थ कपड़ा, ते नीका का अर्थ चंगा सोहना। हुण आपां जे चंगा कपड़ा भी कोई पा लैंदा ना, आपां भी उहनू भी रूहानियत नाल जोड़ के वेहने भी इहने एडे सोहने कपड़े पाए किहड़ा भगत होना, क्योंकि हिंदुस्तान विच गल पा दित्ती कि जिहड़ा सिर च सवाद पाउंदा उह ब्रह्म ज्ञानी। ओ नहीं गुरु के सिखो, चेते रखियो, कई वारी पाटे कपड़े पा के भी बंदे नूं रब भुल जांदा, पाटे कपड़िया की खौमे विच ही तुरिया फिरदा। कबीर साहब ने तो गल कही, कहन लगे नगन फिरत जो पाई है जोग, बनका मिर्ग मुगत सब हो गए। जे नंगिया रह के रब मिलदा हुंदा सारे मिर्ग ब्रह्म ज्ञानी ना बन जांदे। हुण कई ये भी पैरां जुत्ती नहीं पानी, है ना समझो भी मैं निंदिया कर रहा। ते गुरु कलगीधर जी का एक बचन है, कह लगे बांदर नूं केड़ा हर समाई बाद कोई जुत्ती पवांदा, उह ते जवांदरू ही पैरा तुरिया नंगे पैरी, बांदरा सदीव पाए नंगे ही फिरत है। देखो ना क्या महाराज कृपा करो, एक तां कपड़ा चंगा दिया जे, दूजी पैर च पाण वास्ते जुत्ती भी चंगी दिओ। पनिया छादन नीका अनाज मांगू सत सीका, जेडे खेत नूं सत वारी वाह के दाना बीजिया उस खेस दा दई मैनू अनाज। गौ भैंस मांगू लवेरी, भजी हुई गां मज नहीं। ते तुहानू पता जो कुछ हाल जिमीदार करदे ने, जिहड़ी गां मज भज जांदी इहनां दी खुरली नाल ही चेंज कर दिंदे। कहिंदे पिछले पासे बन्नो उहनां ने किहड़ा दुध देना है। कहिंदे ने गां ते मज लवेरी दई, हुण कपड़े भी चंगे। मैं बेनती करां वी भाई साहिब उत्ते सन उह खूह ते बैठा भगत, देखो रब नूं कहिंदा वी अपनी गल को नहीं बननी पिंड जाके, अपनी तां तां गल बनूगी जे अरबी घोड़ी उत्ते तेरा भगत इक वारी पिंड दी गेड़ी देवे। तां ओह कहिंदे ने कृपा करिओ, दो गां ते मज लवेरी देनी है दुध देण वाली, ते जिहड़ी घोड़ी होवे चंगी अरबी होवे। गौ भैंस मांगू लवेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। ते मेरा ख्याल है जदों शब्द उच्चारण किया भगत जी का विआह नहीं सी होया। घर की गेहन चंगी जन धन्ना लेवै मंगी, कहिंदे जीवन साथी वी ओह दई जिहड़ा भगती करन वाला नाल होवे, घर सतसंग बन जाए। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਣੋ ਦਰਾਨੀ ਸੁਣੋ ਜਠਾਨੀ, ਅਚਰਜ ਇੱਕ ਭਇਓ ਸਾਤ ਸੂਤ ਇਨ ਮੁੰਡੀਏ ਖੋਇਓ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਉਹ ਦਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਖਲ ਬਾਂਧਿਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਖੇਤ ਬੀਜਦਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀਜ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਉ, ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਉ।
1: ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ

जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक खुशी पी सच कवन बधाई कह सको बे अंत गुणिता कर कृपा

परनवत नानक तिनके शरणा जिन तो नाहे विसरया। परम सम्मान योग जुग जुग अटल सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर हफ्तावारी दीवान दी हाजरी भर रहे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, आप जी ने हुणे ही बड़े प्यार दे नाल साडे अति सत्कार योग भाई साहब भाई बख्शी सिंह जी होर ने सतगुरु ने जो अज अमृत वेले हुक्म दी दात सिख संगत नूं बख्शिश कीती है उस दी विचार असानू सरवण कराई। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी दे सलोक और गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी उन्हां दे पवित्र मुखार बिंद तो उचारण कीती हुई पौड़ी ते धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दी पौड़ी नाल इन्हां दो श्लोकां विच गुरु अमरदास जी दे उस पवित्र बचन दी व्याख्या सरवण कराई जो सतगुरु जी ने अपने जीवन दे अंदर कमा के अपने अनुभव दे पवित्र बचन सानू बख्शिश कीते। साध संगत आओ जिवें गुरमुखा ने हुक्म कीता सी पिछले साल भी कि श्री ननकाणा साहिब जी दा साका भावां ओ कई वारी सुना भी चुके हैं, आप जी ने कैस राही भी सुनिया है, पर जो आप जी दा हुक्म धन गुरु नानक साहिब जी दा ओ पवित्र अस्थान जिस थां ते दाते ने रहमतां दा मीह वरसाया उथे कुकर्मी मसंद ने महंत ने इखलाक तो डिग के कियो जियां कणौणियां कारवाइयां कीतियां ते दूसरे पासे उस घर नूं आजाद कराने दे लई सतगुरु दे सिख किन्ने चाओ दे नाल अपने सिर तली दे उत्ते रख के गए ते गुरु नानक साहिब जी दा घर अपने खून दे नाल उन्हां ने उस अस्थान नूं धो के कुकर्मी महंत तो आजाद कराया सी। करो कृपालता धन गुरु नानक साहिब जी दे पावन पवित्र चरण कमलां दी टेक लवो। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप बख्शिश कृपा करके विच वरतो अंदर नूं एकाग्रता टिकाओ बख्श के दाता जी इस गुरु प्यारियां दे इतिहास नूं आप विच वरत के दातार जीओ विचार करा लवो। करो कृपा साध संगत असीस बख्शो गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पावन पवित्र पातशाह जी दे अमृत बचन आपां पढ़ने हां कि जिस धरती ते सतगुरु दे चरण पै जान उस धरती दे भाग इन्ने कु चंगे ने कि उह सुक्की कोई धरती भी मानो

बचने दा सूरा सतगुरु बचन दे सुरे सूरे ने बचन के बली ने ते नाल उना ने शब्द कहे ने औगुणा नू लै लैंदे ने ते जिज्ञासू दे सिर दे अंदर गुणा दा प्रकाश कर देंदे। धन गुरु अर्जुन देव जी दे संबंधी पट्टा ने सब तो पहला ए बचन शिव तो सलाह जदो कीती ते कहन लगे के उस अकाल पुरख नू जो अचल है जो अविनाशी है ओदा ध्यान टिका के असि गुरु के भय विच रह के गुरु अर्जुन देव जी दे गुणा दी विचार सहज विच एके करने। सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी जे सिमरत दुरमत मल लासी सतगुर चरण कवल रित धारंग गुर अर्जुन गुण सहज विचारंग। कहन लगे गुर रामदास घर कियो परगाशा के साहब धन गुरु अर्जुन देव जी आप जी ने गुरु रामदास जी दे घर अंदर प्रगाश कीता चानन कीता गुरु रामदास करकी ओ प्रगाशा सकल मनोरथ पूर्ण आशा तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो ते नाल बचन सी कल जोड़ कर सुजस बखाहे। हुण जदो ए बचन सी पढ़ने शहादत वाले दिन फ्री मौत सवेरे ए अर्ज भी कीती सी ए तुक बड़ी जल्दी पढ़ देनी के तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो के सतगुरु तुसी जन्म तो ही गुरमत दे परपेख विच ब्रह्म नू पहचानना कीता है गुरमत दे नजरिए नाल ब्रह्म नू पहचानिया। हुण ब्रह्म पहचानन दा भाव केवल ब्रह्म दी व्याख्या करना नहीं ब्रह्म पहचानन दी गल ते जिसने ब्रह्म नू माणिया पहचानिया ओदे संबंधी गुरु अर्जुन देव जी ने आप उदाहरणा दित्तियां के धन गुरु अर्जुन साहिब तुसी जन्म तो गुरमत राही ब्रह्म नू पहचानिया ते जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सुजस बखाण्यो। कहन लगे पट कल जी हथ जोड़ के तुहाडी सिफत कर दे ने। धन गुरु ग्रंथ साहिब दी अमृत बाणी ते आधारित जिसने ब्रह्म नू पहचान लिया है उस नू कहा जांदा है ओ ब्रह्म ज्ञानी है। गुरु अर्जुन देव जी ने ब्रह्म नू पहचानिया ते अपनी जिंदगी दा अनुभव अपने अंदर दा जीवन ओ अमृत बाणी विच कह के गए के ब्रह्म नू पहचानन वाले दा जीवन कैसा हुंदा है। भावां सानू उदाहरण दुनियावी दित्तियां हजूर दे बचन सी पढ़ने हैं सुखमनी साहिब दी बाणी विचों आउना शहादत संबंधी अर्ज करनी है। कहन लगे ब्रह्म नू पहचानन वाला दो तरह दी जिंदगी नहीं दिंदा। किवें जी? कहन लगे ब्रह्म नू पहचानन वाला ए नहीं के ओ जबान तो कुछ कहे ते जबान तो जो कहे ओदे पिछे जीवन कुछ होर होवे। किन्ने ब्रह्म नू पहचानन वाला जो कुछ अपने मुंह तो कहिंदा है ओ कुछ ओदे मन विच है जो कुछ ओदे मन विच है ओ मुंह तो कहिंदा है। पर एदा भाव ए नहीं के एक बंदे दे मन विच झूठ होवे ते जबान तो भी झूठ पईए बोले ते एदे अर्थ कर दिए भी एदा मन ते मुख इको वे भी ब्रह्म ज्ञानी है। बेनती समझियो एदा भाव ए नहीं के जो अंदरों कहे ओ बाहरो होवे जो बाहरो कहे ओ अंदरों होवे। हो सकदा एक बंदा अंदरों झूठा होवे ते बाहरों भी झूठ बोले एदा परिभाषा ए ना समझनी। अंदरों बाहरों दा भाव है के जिस दे मन विच भी सच है ते जिन्हां दी जबान विच भी सच है केवल अपने अंदर सच नहीं जेड़े हर थां ते सच नू परिपूर्ण तकदे ने उन्हां नू हजूर ने कहा ओ ब्रह्म नू पहचानन वाले। असी हजूर दे शब्द पढ़ने आ श्लोक के मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेख है एक बिन कोई। मन विच भी सच होवे ते मुख विच भी सच होवे मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै एक बिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। किन्ने ए ने ब्रह्म नू पहचानन वाले दे लक्षण ए ने ब्रह्म ज्ञानी दे लक्षण। साहब ने फिर उथे उदाहरण दिती वैसे ते धन गुरु अर्जुन देव सचे पातशाह उन्हां दे अमृत बचन पढ़िए 30 रागां विच मेरे कृपालू सतगुरु जी ने बाणी उच्चारण कीती। हालांकि उस तो पहला उन्हां दे पिता गुरु धन गुरु रामदास सचे पातशाह उन्हां ने भी 30 रागां विच बाणी उच्चारण कीती। तुहाडे विच दरमियान अज विद्वान सज्जन आए बैठे ने मेरे कहन तो मुराद डॉक्टर पन्नू डॉक्टर हरपाल सिंह जी पन्नू ओ काफी काफी की दाते दी अपार बख्शिश है उन्हां दे
लड़के

हर मान निमाणे जन नानक नाम दीवान है हर तान सिताणे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग शहीद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान होए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आपने सतगुरां दे इलाही बचन कीर्तन राही सरवण कीते ने, जिथे आपां सतगुरु गुरु रामदास महाराज उन्हां दे पावन पवित्र बचना दी विचार रोजाना करदे आ रहे हैं। उथे अज छठम पीर मेरी पीरी दे दाता अकाल तख्त साहिब दे सिरजनहारे सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का आगमन पुरब है। ओ सतगुरु जिसने जदो जालम प्यार नाल ना समझे, कुर्बानी देने तो बाद भी ना समझे, ते उसनू कृपान दे मुठे ते हाथ रख के उन्हू समझाण दा एक तरीका सानू दिता। उस सतगुरु दा अज आगमन पुरब है। आओ गुरु रामदास दे बचन ने ते इस परिवार अंदर गुरता गद्दी गुरु रामदास दे वेले तो ही आई। ताई तां भाई गुरदास ने कहा सी, जान ना देशां सोढ़ियां होरस आजार ना जरे अजावे। आओ सतगुरु दे पवित्र बचन और गुरु इतिहास दी विचार आपां ने करनी। समा थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकदा है, कृपा कर दिया जी। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज आप कृपा करके विच वरतो, अपने पवित्र बचना दी विचार करा लवो। करो कृपालता गुरमुखो, बड़े प्यार अदब दे नाल उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश गुरमुखो, फिर उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी दे परसों आपा ने बचन उचारे सन, विचार कीती सी। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर तीजै राम राजे, जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजै। थोड़ी जी तवज्जो देनी अज दे संत नूं, अज दे बचन दी व्याख्या कर ली सानू पिछे झात जरूर मारनी पैगी। ते अर्थ उदन स्पष्ट कीते सन कि जेड़ा बंदा अंदर कपट रखदा है, अंदर ओदा अत दा मैल है, ते बाहरों भावे ओ रागां विच गा के लोकां नूं सुनाए, ओ कई तरह दे नाद वजा के संख वजा के कह मैं प्रभु दा भगत हां, भावां ओ अनेकां ग्रंथ पढ़ के कह कि मैं आत्मा दी परमात्मा दी मन दी मैं इस विषयां ते गंभीर विषयां ते बोल सकना, पर मेरे गुरु रामदास कहन लगे जे अंदर कपट छल नाल भरिया पिया, जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजै। तेरे सुनाउण गाउण दा कोई लाभ नहीं। एदा मतलब जे

0: ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਾਵਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਧੀ ਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਪਿਛਲਾ ਸੀ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਲਏ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੜਤਨ ਭਰੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਧੀ ਖਰੇ ਹਰ ਭਾਣੇ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸੋਚੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਏ ਅੱਜ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੇ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਠਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹਵੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਭਰੀ ਪਈ ਏ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੱਕਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੌਮ ਵਾਲੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਗਾਂ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਨ ਦੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੈਦ ਚਿੱਟੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਗਾਂ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਿਖਨ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਵੀ ਅੱਤ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਵਾਂ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੀਵ ਘਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿ ਦੇਗਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਤੁਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਏ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਜੁੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ। ਪੱਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮ, ਗੁੱਦੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਭੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਪਹੁੰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੂੰ ਤਖ਼ਤ, ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਹੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ। ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਕੋਏ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਏ, ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਸਤਰ ਮਲੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਖੰਡ ਦੰਭ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ। ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ, ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨਿਉ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਚੇਤੀ, ਦੇਖਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ, ਚੁੱਪ ਧੀ ਕਰ ਜਾਹੇ परवाह ना ही किसी केरी बाज सचे ना एक मालक तो बिना उन्होंने किसे की परवाह नहीं। बाबे फरीद ने सूफी संत ने भी यही बचन कह कह लगे जेड़े खुदा दे नजदीक ने ना कई बारी उन्होंने साड़ी अख पहचान नहीं सकती। सह बाबा फरीद का बचन है कि साबर अंदर साबरी तन एवं जलेन खोन नजदीक खुदाए दे भेद न किसे देन। बारों भुल चुक बोल दे पी खड़े हर भाने भेद न किसे देन। अंदरों जुड़े ने बाहर दी किरिया देख के कह देने भी ए मनुख इहो जे है कि जेड़ा बारों एहो जे शब्द बोलदा है ते उंज ए कहिंदे ने रब दा भगत गुरमुख प्यारे। डॉक्टर भाई साहब भाई वीर सिंह होरां ने ना एक बड़ा बचन किया प्यारा इनू स्पष्ट करन दे ले। आम तौर ते जदों भगती सिमरन विच कोई जुड़दा है ना ते लोक भी उहनू टिकन नहीं दे दिंदे। इहदा कारण दुनिया की मंग केवल ऐस दिस दी दुनिया तक खलोती है पर भगती करन वाला जिहड़ा सिमरन करन वाला जिहड़ा उहदी मंजिल कुछ होर है। कई वारी उहदे नेड़े हजूम भी इहो जिहा इकट्ठा हो जांदा है लोग उन्हूं थिड़का भी देंदे ने पर जिन्ना ने मंजिल अपनी प्रीतम नूं मिच लिया वह कई बारी शब्द एहो जिहे बोलणगे पर उन्हां दा मकसद यह नहीं कि लोगों नूं वह बुरा कहना चाहते ने। साहब ने बाणी विच प्रमाण दिते ने मैं अर्ज करांगा वह इस करके कि दुनिया उपर दे साडे जीवन नूं तक के दूर चली जाए पर अंदरों अंदर असीं मालक नाल सांझ बना के रखी। भाई वीर सिंह ने एक उदाहरण दिती कहन लगे गुलाब दा फुल खिड़े ते जदों किन्ने ने मैं उस फुल नूं तकिया ते ओदी महक ने मैनू मानो चुप विच आवाज दे के रोक लिया। कोई भी नेड़े लंघे ते गुलाब दे फुल दी महक ओनू रोक लिए। भाई वीर सिंह लिखदे ने मैं उस फुल नूं तक के ना ओनू हथां विच लै लिया ते जदों हथ पाया ते अचनचेत उसे फुल दी टाणी दे नाल इक तिखा कंडा लगा। उस कंडे ने मेरे उंगल दे अंदर चुभ के खून जेड़ा उंगल विचो बाहर कढ़िया। भाई साहब विद्वान ने हर गल रमज विच करदे पए ने कहिंदे ने मैं पूछ लिया ए गुलाब दे फुल मैं ता बड़ी तेरे कोल आस करके आया सां कि तेरे अंदर महक बड़ी है जदों तेरे कोलों लंघी दा ते अंदर नूं ठंड पैंदी है तेरी महक तेरी आकर्षण शक्ति अपने वल खिंचदी है। पर इन्ना सोहना होके इन्ना कोमल होके हर एक नूं महक दे के भी पर आ कंडिया ने तेनूं बज ला दिती जिथे तेनूं रब ने महक दिती उथे तेरे नाल कंडे क्यों पैदा कर दिते। अगो फुल ने बड़ा सोहना उत्तर दिता कहन लगा गुरमुखा इहदा कारण यही रब ने कंडे मैनूं तां लाए ने लोक देख के मैनूं जदों कोल रुकदे ने ते तोड़न की कोशिश करते ने उन्हें नाल कंडे पैदा करके गल कह दिती एदी महक नूं खलो के ता मान लै पर इनू तोड़न की कोशिश ना करे। रहन दे मेरे कंडे बाहर मुखी बिरती ने अंदर मेरे महके पर कंडिया नूं देख के मेरे अंदर नूं माड़ा ना कही कंडे ता इस करके ने कि मैनू कोई टाणी नालों तोड़ के ना लै जाए। भाई साहब कहन लगे सिख दा जीवन भी कई बारी आपां तकने आ इहो जिहे सिख मिलणगे जिन्हां दे कोल जे रब दी गल करिए अंदर नूं ठंड पैगी जे किते बाणी पढ़नगे तां अंदर नूं धूप आणगे जे किते गुरु दी गल करनगे तां भिज जाणगे। जदों आम वरतों विच तकने आ ते अंज भासेगा बंदा ते वाकई बड़ा चंगा है भगती बंदगी बड़ी करदा पर रुखा जे। भाई वीर सिंह कहिंदे ने नहीं है ओ फुल पर कंडे इस करके ने दुनिया दे लोगो किते प्यार प्यार नाल तुसीं इहनू गुरु तो तोड़ ना जाया। भाई साहिब भाई वीर सिंह ने बचन कीते कहन लगे किसे ने गुलाब फुल तो पुछिया गुलाब फुल तो पुछण लगा ते पुछदिया उहने अगो उत्तर बड़ा सोहना दिता कहन लगे गुलाब फुल तो किसे ने पुछिया ऐवे सुंदरता दे साईं हे सुहापण दे मालक। गुलाब फुल तो किसे पुछिया ऐवे सुंदरता दे साईं इस सुहापण इस सोल सोज नूं है क्यों कंडियां बज लाई ए कंडे क्यों पैदा हो गए। अगो कहिंदे ने मस्त अलमस्ती सुर विच सोहणे हाथ क्या खबर नहीं मैनू फुल कहिंदा मैनू कोई पता नहीं क्यों कंडे लगे ने बस मेनू ता इन्नी कुछ समझ पई है, कहन लगे मस्त अलमस्त सुर विच सोने हस क्या खबर नी मेनू तोड़न ना दी फटी मेरे मौला ने लिख लाई। मेरे रब ने इको गल कही है, कंडे वेख के मेनू तोड़ी ना। मैं अर्ज कर रहा सतगुरु ने बाणी विच भी ये बचन किया। आसा राग विच एक शब्द आंदा है, महाराज दी राहो दी तोके बार सूत सगल छो मौला। साहब कहिंदे ने भगत भी कई बारी अंदर नूं लुकांदा है। ए शब्द आरंभ हुंदा है आसा महला पंजवां, साच नाम मेरा मन लागा, लोगन छो मेरा ठाठा बागा। कहिंदे ने मेरा अंदर जिहड़ा है ओ सच्चे नाम भी जुड़े है, पर बार जदों मैं लोकां नाल गलबात करना ठाठा बागा दा मतलब केवल समाज विच विचरन लई। मैं चित उन्हां विच नहीं जोड़िया, साच नाम मेरा मन लागा, लोगन क्यों मेरा ठाठा बागा, बार सूत सगल क्यों मौला। बार इंज लगदा मैं दुनिया दे कामां विच रुझिया वां, पर किन्न मेरे अंदर नूं देखो, पर मैं अंदर फुल दी तरह निर्लेप रखे है। बार सूत सगल क्यों मौला, अलिप्त रहू जैसे जल मैं कौला, दीस आवत है बहुत पिहाला। मेरी शकल नूं देख के साहब कहिंदे ने लोग सोचदे ने मैं किन्ना पुरख तां, पर कहन लगे सगल चरण की ए मन राला, पर मेरे मन नूं देखो मेरा मन तां तुहाडे चरणां दी धूड़ है। इहदा मतलब कि जे बाहरों भुल चुक बोल दे धी खरे हर भाणे। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब ने कुछ प्रमाण दिते ने। कई वारी सज्जन कहणगे कि बाहर दा जीवन कुछ होर होवे, बाहर मनुख दी गल्लां बातां विच बिरती कुछ होर होवे, ते की ओ अंदरों जुड़िया हो सकदा है। हां सतगुरु ने बाणी विच प्रमाण दिते, ते कबीर साहब ने दो शलोक अपने शलोकां विच अंकित कीते ने। ओ कहिंदे ने नामदेव ते तरलोचन दी गल करदे आं। तरलोचन ने एक दिन पूछ ही लिया सी ना, कहिंदा नामदेव जिथे तू बहिना गल कई वारी तू नाम दी करना, चार बंदे इकट्ठे होण तू गल गुरु दी कर जाना, पर जदों तेरे बाहर दे मैं लिबास नूं तकना वा जिओ जे कपड़े आए ओह जे पा के तुर पैना। वेखा बनारस दी धरती ते कई ऐसे वैष्णव भगत ने, कई ऐसे साधु ने जिन्हां दे वस्त्र बड़े कीमती ने, उन्हां दे चेले बड़े पिछे ने, पर मैं तेनू पुछना चाहना ना तेरे पिछे कोई चेले तुरदे ने, कपड़े तेरे सीधे साधे ने, बोली जदों तू बोलना ओह भी सीधी बोलना है, ते सारा दिन कपड़े रंगण दा काम करना। पर मैनू एक गल दस दे, केवल लोकां नूं तू नाम दी गल सुनाने, सारा दिन तू माया विच खचते, तेरा अंदर ता रब नाल आप नहीं जुड़िया। अगो नामदेव ने उत्तर बड़ा सोहना दिता, कई वारी बाहर दे जीवन नूं ताके भरमो ना, जिन्हां ने अभ्यास कीता है उह प्यारे दे चरणां विच अंदरों अंदर जुड़ चुके। पर अभ्यासी पुरश हर कोई नहीं, हुण अपने सज्जन भी प्रमाण ए दे दिंदे ने। शब्द आरंभ हुंदा नामा माया मोहिया, कबीर साहब दे शलोक ने। नामदेव तैनू ता माया ने ठग लिया, कह तलोचन मीत काहे छीपो छैलै राम ना लावो चीत। तेरा चित राम विच नहीं जुड़िया, सारा दिन कपड़े रंगण ते रहिना है। ते अगो उहने उत्तर बड़ा सोहना दिता, कहन लगा नहीं ओए नामा कह तरलोचना मुख ते राम संभाल। ओ तरलोचन तू अपने मुख तो जी राम राम जपया कर, हाथ पाऊ कर काम सब, मैं हथां पैरां नाल कम करना वा, पर कीत नरंजन नाल मेरा जिहड़ा चित है ना ओ कदी वाहिगुरु तो एक खिन भी दूर नहीं गया। उहने सवाल कर दिता इह किवें हो सकदा है। अपने सज्जन भी इह कह दिंदे ने ना कि हाथ पाऊ कर काम सब कीत नरंजन नाल, असी ता चलदिआं फिरदिआं नाम जप लैने आ। पर मैं अर्ज करा प्यारिओ एक अवस्था है, कदी तको खां अपने अंदर नूं टिकाणा किन्ना कु मुश्किल है। आम तौर ते जदों नाम दी गल चले किन्नी एकाग्रता चाहीदी है। जिद्दन फौज विच कोई मनुख भर्ती हुंदा है ना ते उहनूं गोली चलाण दी जाय दसदे ने, ते जदों ओह गोली चलाण दी जाय सिखदा है ते उहनूं इक गल कहिंदे ने कि अपने एक नेत्र नूं बंद कर लई, पर जदों तूं गोली चलाण लगना उदों कोशिश करी कि अपने साह नूं रोक लई। ते जे ओह कहे भी क्यों शरीर मेरा तां सारा पिया अपने साह नूं क्यों रोकां, ओह कहिंदे ने हो सकदा है कि तेरे थोड़े जे सह लैण दे नाल ए बंदूक जेड़ी तेरी छाती न लगी है किते ए हवा दे एक इशारे नाल थोड़ी जी हिल गई ते निशाना टिकाने ते लगना नहीं। एक फौजी निशाना सीखन लग्या ओनू इनी एकाग्रता चाहीदी है। आ माइया सुई विच धागा पांदियां ने ते चेते रखो हर कोई पांदा जदों धागा धागा पान लग्या अपने सह नू भी रोक लईदा है कि कई बारी सह दे नाल भी उंगल थोड़ी जी हिल जाए ते उस सुराख दे अंदर धागा पैंदा नहीं। इहदा मतलब इनी एकाग्रता इन्हां कम्मां लई चाहीदी है ते जिहदे बारे साहिब कहिंदे ने कि मुक्त द्वारा संकुड़ा राई दसवें पाए ओहदे लई किन्नी कु एकाग्रता चाहिए। पहलां एकाग्रता नाल टिकना पएगा। एक दिन मैं अर्ज कीती सी पढ़ाई आरंभ विच करिए ते तरीके होर ने ते जिदन बंदा पुग जांदा है ओदन ओहदे पढ़न दा ते कहण दा तरीका कुछ होर हो जांदा है। भगत साहिब नूं पुछिया इह किवें हो सकदा है कि बाहरों तू गल्लां नहीं करें हाथ पाओ कर काब सब कीर्त निरंजन नाल जे बाहरों भुल चुक बोलते ती खरे हर भाणे ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच रामकली राग ते जोगियां दा बड़ा प्यारा राग है रामकली। यही कारण सिद्ध गोष्ठ भी रामकली राग विच साहिब ने भगत नामदेव ने एक शब्द विच पंज उदाहरणां दित्तियां कहन लगे यह हो सकदा है संभव है असंभव नहीं। यह हो सकदा है कि बंदा किरतकार करदिया होया भी मालक नाल जुड़िया रहे ते जिहड़ा बंदा जुड़िया नहीं वह उदाहरण तो बिना समझदा नहीं। वह कहिंदा कोई प्रमाण दे ते भगत ने पंज प्रमाण दिते कहन लगे सुन ओ त्रिलोचन छोटे छोटे बच्चे पतंग उड़ांदे ने ते एक बच्चे दे हाथ विच डोर है नाल दे साथी भी मकान की छत ते ने वह गल्लां भी करदा ते जे पुछ लिए बेटा पतंग भी उड़ाना पे है छोटे छोटे बच्चियां नाल साथियां नाल गल्लां भी करना है पर तेरा ध्यान किधर है ते अगो वह बच्चा कहेगा बाबा मैं भावें अपने साथियां नाल गल्लां करना पर मेरा अंदर वाला चित जिहड़ा वह पतंग की डोर दे विच ही। कहिंदे जे एक बच्चा गल्लां करदिआं भी डोर नाल जुड़िया है ते की भगती करन वाला काम कार करदिआं अंदरों जुड़ नहीं सकता। उन्हां दूजा प्रमाण दिता कहन लगे पुरातन समय बीबियां भैणां खूह तो पानी भर के लियांदियां ने सिर ते गागर है पर जदों रस्ते विच आउंदियां ने हसदियां ने गल्लां करदियां ने जे पुछिए भैणां कि सिर ते धड़ा चुकिआ है ते आपस विच गल्लां करदियां जे तुहाडा ख्याल किधर है अगों कहणगियां वीरना भावें असीं आपस विच गल्लां करदियां हसदियां वां पर असलियत यही साडा अंदर वाला चित जिहड़ा है उह सिर ते चुके होए घड़े दे विच जुड़िया होए। तीजा प्रमाण दिता कहन लगे तू सोने दा काम करन वाले कुल जा उह सोने नूं घरदा पिआ है पर गाहकां नाल भी गल्लां करदा है जे पुछिए प्यारिया इह किवें गल्लां भी करना है ते तू सोना भी करना है तेरा ध्यान किधर है। वह कहिंदा गाहकां नाल गल्लां करना पर चित मेरा सोने दे भी जुड़िया होया है। साहब ने चौथा प्रमाण दिता कहन लगे एक पशु वल देख लै गां भावे दस को ते जाके चुगदी होवे जे घर ओदा बच्छा बजाए ना ओ दस को ते चुगदी होई भी बच्चे दा ध्यान रख दीए घर विच मां काम कर दीए बच्चा पंगूड़े विच पिया है कदी भांडे मांजे कदी प्रशादा तैयार करे घर विच झाड़ू लाए पर काम करदिया होया भी ओदा चित जिहड़ा पंगूड़े विच पए होए बच्चे दे विच ही। पंज उदाहरणा देख के कहन लगे त्रिलोचन समझ बाहर दी किरिया नूं देख के मत कह दई कि भगत नहीं जिहड़ा जुड़िया ही वह बाहर दे काम करदिया होया भी प्रीतम तो कदी दूर नहीं हुंदा। रामकली राग दा इह शब्द कहिंदे ने आनी ले कागद काटी ले गूडी आकाश मदे भरमी अले पंच जना सो बात बतोवा चीत सो डोरी राख यले कहिंदे ने मर राम नामा बेद यले जैसे कनक कला चित मांड यले। तीजा प्रमाण दिता कहन लगे आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त विनोद विचार करती है चीत सो गागर राख यले मंदिर एक द्वार दस जाकर गौ चरावन छाड़ यले पांच कोस पर गौ चरावत चीत सो बशरा राख यले। अखीर ते कहन लगे कैस नाम दियो सुनो त्रिलोचन बालक पालन पोड़ी यले अंतर बाहर काज विरोधी चीत सो बारक राख यले। ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕਾ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੌੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਸੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੀਂਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣੀ ਏ ਲੰਘਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਮਾਈ ਤਾਂ ਝੱਲੀ ਏ ਹਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਹੱਥ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੋਕਰੀ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ ਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਆ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨੀ ਏ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਹੱਥ ਹਿਲਾਨੀ ਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੀਂਗ ਨੂੰ ਝੂਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੱਲੀਏ ਅੱਗੋ ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਸਾਂ ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਿਲਦਾ ਹੱਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਖਾਂ ਤੂੰ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਹਿਲਾਨੀ ਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਈ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਨਿਆਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਟਾ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਸੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਏ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਣ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹਨਾ ਹਲਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੰਘੂੜੇ ਨੂੰ ਝੂਟਾ ਦੇਣੀ ਪਈ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਪੋਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਝੂਟਾ ਦੇਣੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਖੇਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਬੀਬੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਭਰਤਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚਾ ਰੋਵੇਗਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਲੀਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ ਪਤਾ ਨੀ ਤੇਰੀ ਟੋਕਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਿਆਈਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀ ਖੰਭ ਛਾੜ ਢੱਠੀ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਉਡਾਰੀਆਂ ਪਿਆਲੇ ਅਨ ਦਿਸ ਨਾਲ ਬੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਪਿਆਲਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਸ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਸਿੱਖ ਪਿਆਲੇ ਅਨ ਦਿਸ ਨਾਲ ਬੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਰਸ ਤੇ ਸਰੂਰ ਆਵੇ ਝੂਮਾਂ ਆਉਣ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋੜਦਾ ਤੇ ਵਹਿਮੀ ਢੋਲਾ ਆਖਦਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਬੁੱਧੋਂ ਪਾਰ ਤਾਰੀਆਂ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਵੇ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲੇ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਬਚਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਣ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬਾਹਰ ਭੋਲਾ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਧੀ ਖਰੇ ਹਰ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਣਾ ਬਾਹਰ ਭੋਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਚੁੱਪ ਚ ਬੋਲਾ ਉਹ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਛਕਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जे तेरे अंदर प्रीत है तू सब तो सियाणा तू सब तो ज्यादा सोझीवान है। ते पुछया महाराज सियाणे ता दुनिया विच बड़े ने, किन्ने मैं उस सियाणप नू परवान नहीं करदा जे बाहरों सियाणा अंदर प्रीत नहीं। शायद यही कारण साहब ने बाणी विच सियाणियां दी गिनती कीती, कहन लगे अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, जे प्रीत नहीं काहदा सियाणा, मृतक कही है नानका जय प्रीत नहीं भगवंत। पर इत कहने जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ सियाने राम राजे। सियाणप नल नहीं साहब रोज होका दे के एक बचन कहने गुर की मातू ले आने भगत बिना बहु डूबे सियाने। साहब कहने सहस सियाणपा लक हो है ता एक न चल है नाल ना तू आवे वस, बहुत सियाणप है किसे सियाणप नल वस आने। साहब कहने रे जन मन माधो से लाई है चतुराई न चतुर्भुज पाई है। वो सियाणप नल नहीं सियाणा ओ वे जेड़ा नाम भी जुड़े है, सियाणा ओ जिदे हिरदे विच गुरु लई प्रीत है। साहब कहने जे बाहरों भुल चुक बोल दे, जे बाहरों ओ किते शब्द भुल के कुछ होर बोल देंदे ने मत कही ए माड़ा है। पै लगे नहीं भी खरे हर भाणे पर मेरे वाहगुरु नू भाणे दर ते चंगे लगदे। बाहर दे शब्द देख बाहर दे जीवन देख के ना भरमी ओ अंदरे अंदर टिके ने। कहन लगे जे बाहरों भुल चुक बोल दे भी खरे हर भाणे हर संतां नू होर थां नहीं, रब दे संतां नू रब तो बिना कोई थां नहीं। हजूर कहन लगे हर माण निमाणे उन्हां निमाणियां दा माण तां केवल वाहगुरु है, किसे होर वल नहीं तकदे। एक अदीब ने बड़ी सोहनी गल कही, कहिंदा बाहर दे भेख नू देख के किते ओदे बस्तर, पर अज आपां तकने मैं अर्ज कीती चोला सोहना लिशकना होवे पग है चंगी गोल गड्डी होवे ते चिमटियां दी पिछे छनकार पैंदी हो, मैं किसे ते तर्क नहीं कर रहा। असी बाहर दे भेख नू देख के बड़ी जल्दी असर कबूलने हां, पर साहिब कहिंदे ने नहीं संत कई वरी मलीन वस्त्रां विच भी मिल सकदे, संत कई वरी पाटे कपड़ियां विच भी मिल सकदे, ते चेते रखी संत कई वरी पेंट कमीज विच भी मिल सकदा। कोई भेख दी पाबंदी नहीं। साहब ने बाणी विच वचन कीते ने बेअंत ऐसे, हजूर ने सतगुरु ने कृपा कीती। एक विद्वान ने बड़े सोहनी शब्द कहे ने, वो कहिंदा एक वरी कोई मनुख किसे दे घर थल्यों निकले है। गल सिर्फ इस नूं समझाण लई कि संत नूं टेक केवल एक रब दी। कहिंदा उच्चे महल विच खलोती औरत पान चबांदी पई सी ते अचनचेत उहने पान दी थोको साधु दे सिर ते सटी। उहने कहा कुछ नहीं, सिर्फ अखां भर के उस औरत वल देख के अगे चला गया। उस औरत ने अपने मालक नूं कहा सी लंघण वाला दर दर ते मंगण वाला भिखारी एदी की मजाल के मेरे वल ऊपर तके है, भावां मैं थुकिया है पर एदा कम की है नीवी पा के चला जांदा। ओ दौड़िया आया उतर के मकान दी छातों थले उहने साधु दे सिर विच छोटा मारिया, साधु चुप कर गया। जदों ए मार के वापस पिया जांदा है उर्दू दा ओ दीप लिखदा है अचनचेत उच्चे जांदियां पैर फिसलिया जमीन ते डिगदिया डिगदिया सार एदा सिर पाटा ते नाल ही मौत हो गई। जेड़ी मान विच मत्ती औरत सी थले उतरी कोल आके साधु नू कहिंदी है बाबा मैनू बख्श दे, मैं समझी नहीं तू किन्ना कु उच्चा है, मैं ता तेरे केवल वस्त्र देखे। ते जेड़ा अजे तक चुप सी कहन लगा भैणे मेरा कोई दोष, कहन लगी मेरे मालक ने तेनू छोटा मारिया ते वापस जांदिया जमीन ते डिगा मकान तो ते ओदी मौत हो गई, ओनू जिंदगी बख्श दे। फकीर दियां अखां भारियां कहन लगा भैणे तू मेरे केवल लिबास नू तकिया है, पर एक गल चेते रखी मेरा कोई कसूर नहीं, बस मैं एक गल तेनू दस दिया तेरा भी मालक है ते मेरा भी कोई मालक सी, मैं ढंडोरा नहीं देंदा मालक मेरा भी है, तेरे मालक दियां बाहां विच ताकत है, ओ केवल सिर नू पार सकदा है पर जिदे चरणा विच मैं जुड़िया ना उस मालक कोल इन्नी ताकत है ओ छोटा मारन वाले नू धरती तो चौके ले जा सकदा है। मेरे लिबास नू ना देख, उन्हें शब्द बड़े सोहने वरते, कहिंदा तेरे मालक को तेरी रायत जरूर थी मेरे मालक को मेरी हमायत जरूर थी, तेरा मालक आया वो सत पटा गया। केंदा फिर मेरा मेरे मालक को भी ख्याल आ गया, तेरा मालक आया वो मेरे सिर पे डंडा लगा गया। केंदा मेरा मालक आया वो लेखा चुका गया। झगड़ा तो मालकां दा साहब, कहिंदे संत नू टेक केवल एक दिए, हर संतां नू होर थाओ नहीं, हर मान नहीं माने वो टेक एक दी लैंदे ने। जन नानक नाम दी बाण है, हर तान सिताने उन्हां वास्ते ताकत भी नाम है, उन्हां वास्ते आसरा भी नाम है। नाम तो बिना किसी दी टेक लैंदे नहीं। प्यारियो अज जिस गुरु का पुरब आपां मना रहे हैं ना, उन्हें भी बेअंत जीवां नू जी दान दिता, नाम नाल जोड़िया। गुरु हरगोबिंद साहिब दा जीवन एक साध बचन अटलादा तो आरंभ हुंदा है। बाणी विच असीं पढ़दे तां जरूर हां, साहिब ने कहा जिहड़ा दृश्यमान संसार आपां देखदे हां, अज पहाड़ ने असीं कहिंदे हां इह अटल ने, लोक हिमालिया नू कहिंदे ने इह अटल ए, पहाड़ अडोल ए, पर गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने अटल नहीं। शब्द वरत लैंदा पर एक दिन इन्हां ने भी बिणसना। किसी ने कह दिता सूरज जिहड़ा ए सदा रहण वाला है, गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा नहीं, समय की गल एक दिन यह भी बिणसेगा। आ देखते सितारे भी बिणसणगे, चंद्रमा भी बिणसेगा। ते एक गल चेते रखी, जिस धरती ते तू सेवा करी बैठा है इस धरती ने भी बिणसना ही। पर एक गल नाल कह दिती सजना, एक रब की भगती करने वाला ऐसे ही जिदन वह अपनी जबान तो बोलता है बचन कभी कोई झूठिया नहीं कर सकता। साहब ने बाणी विच किया गिर बसदा जल पवन जाएगो, एक साध बचन अटलादा। गिर आ पहाड़, बसदा धरती, पवन हवा सब चले जाणगे, पर एक साध बचन अटलादा। ते जदों मैं गुरु हरगोबिंद साहिब दे जीवन नूं पढ़िया ते चित विच आया सतगुरु तेरा जीवन भी आरंभ एक साधु दे बचन तो हुंदा है। ओ बचन जिहड़ा अटल है। गुरु रामदास महाराज जी दे तीन सपुत्र ने, सब नू पता है वड्डा बाबा पिरथी है, छोटे धन गुरु सब तो छोटे गुरु अर्जन देव ने, बाबा महादेव तो भी छोटे ने, अमृतसर दी धरती ते टिके ने। सिख विद्वाना ने जेड़ी गल कही, कहिंदे ने माता गंगा जी प्रेमा भगती भी दिल ने, गुरु अर्जन साहिब महाराज जी दा आनंद कार्ज होया है, पर घर संतान नहीं। पिरथिया जिहड़ा देखदा है रोज गुरु अर्जन देव नूं लोक नमस्कारां करदे ने, घर दे अंदर भेटा लै के आउंदे ने। ते एक दिन बैठिया ओहदी घरवाली दा नाम सी करमो, उहने इन्ने शब्द कहे, कह लगी तू है तां मेरे सिर दा साईं, पर जे तू किते गुरु रामदास जी दी सेवा करदा, पिता नूं श्रद्धा भावना नाल तकदा, अज गद्दी साडे कोल हुंदी, सिख मैनू वी जगत मां कहिंदे। अज देख उन्हां दे घर विच लोक झुक झुक के नमस्कारां करदे ने, सानू कोई पुछदा नहीं। ते अगो फिर तीए ने कि शब्द किया सी, वाकई सच्चाई परे शब्द ने, ओहदे अगलियां जिहड़ियां हरकतां ने ओह इस गल दी पुष्टि करदियां ने। कहन लगा सुन भागवाने, जो कुछ पिछे हो गया उहनू भुल जा, रब ने सानू पुत्र मेहरवान दिता है। सिख विद्वान कहिंदे ने सतगुरु ने गुरु अर्जन देव ने मेहरवान नू अपनी निगरानी विच विद्या भी पढ़ाई। सतगुरु दे मन विच द्वैत नहीं, पर उन्हां दी सोच की, कहिंदा देख अर्जन दे आनंद कारज नू कितना समा हो गया है, घर कोई पुत्र नहीं, चलिए इन्हां ता दुनिया तो जिवें आए उसे तरह चले जाणा, इन्हां दा नाम किसने लैणे, बस कुछ दिनां दी खेड है, जिदन इन्हें प्राण त्याग दिते गुदगद्दी ता तेरे पुत्र मेहरवान नू मिलनी। उन्हां घर कोई पुत्र है, एक दासी जिहड़ी प्रेम नाल भिजी है, जदों उन्हें सुनिया ते ओ गुरु अर्जन देव दे घर आई, माता गंगा दे चरणां विच झुक के कहन लगी, मां मैनू दसदिआं खेद हुंदा, अज मेरे कन्नां ने शब्द सुने ने, बाबे पिरथिए ने कहा है कि उन्हां दे घर विच संतान किथे, गद्दी तां कल नूं साडे कोल ही आउणी है। जदों माता गंगा जी नूं इन्ने शब्द कहे, आखिर एक इस्त्री दा किरदा है, गुरु अर्जन देव जी घर आए ते नीर भर के कहा, सतगुरु तू तां लोकां दी झोली विच दात पाने, दुध पुत्र दी दात दिने, नाम विच रंग ने पर मैं एक अरदास करनी हां हुण तां लोक भी कहिंदे ने कि मेरी कुख नूं भाग नहीं लगना एक कृपा कर मैनूं पुत्तर दी दात बख्श दे। गुरु अर्जन देव ने उत्थे बचन कहे कहन लगे गंगा पुत्तर दी दात लैनी आ। कहन लगे हां हुण देखो सतगुरु दे घर दी वडियाई अज कुछ लोग कहन भी लग पए ने नहीं जी बाबे बुढ़े कोल किथे अरदास कराण गए। एक गल नूं समझियो जे अज ए कहने के बाबे बुढ़े कोलों अरदास नहीं कराई गुरु समर्थ है फिर समर्थ गुरु गद्दी भी एक दूजे नूं एक तो दूजे नूं दे सकदा है पर नहीं जिदन गुरु नानक गद्दी एक शरीर तो दूजे शरीर भी जोत प्रवेश कर दीए ते विच खलोता बाबा बुढ़ा ही हुंदा है। सब तो पहली नमस्कार बाबा बुढ़ा करदा है। कहन लगे गंगा जे पुत्र दी दात चाहीदी आ ते बाबे बुढ़े दे कोल जा इंद्री जित सिखे शब्दों दे लई वरते सन इंद्री जेती ओदे शब्द कदी झूठे नहीं ते आ बीड साहिब जिथे आपा जाने आ ए भाई लंगा चौधरी सी उस इलाके दा 3 लाख दी जगीर सी इहदी सलाना बड़ा तकड़ा सी इहने ए कुछ कु खीसा गुरु अर्जन देव गुरु नानक दे घर नूं दित्ता सी इत्थे सतगुरु दीआं मझां सन ते बाबे बुढ़े ने जदों बजुर्ग हो गए उदों भी इत्थे टिके रहे अक्सर ओ पशुआं दी संभाल करनी इत्थे खेती कराणी कैसी निर्माणता ओ सिख दे अंदर। कहन लगे ओहदे कोल अरदास करा मेरा मालक भाग जरूर लाएगा। कहिंदे ने माता गंगा जी गए आ ठीक शब्द रथ वाला भी वरतदे ने भाजड़ पै गई पर मैं जिहड़ी अर्ज मैं करनी है माता गंगा जी गए ने उन्हां ने अपने हाथ नाल प्रशादा तैयार कीता है। इहदा मतलब कि एक सिक्खी का नमूना कहन पै करदे ने कि जो कुछ तू लोचना है जे पूरे सिख कोल भी अरदास करा ले ते मेरा गुरु कदी मोड़दा नहीं। दूजी गल नौकर बड़े सन लंगर पकान वाले सिख बड़े ने पर माता लंगर इस करके पकांदी है कि जे कुछ लैणे ते अपने हथी सेवा करन दी विजाज सिख लै। आ बाबा फूला सिंह ने रणजीत सिंह एक बारी प्रसाद छकाया घर नौकरा चाकरा ने ते बाबा जी ने अरदास कर दिती कि दाणा पानी गुरु दा टहल पानी तेरे सेवकां दी। ते पिछों रणजीत सिंह कहिंदा बाबा जी चुप करके एकांत विच बाबा जी कहन लगे सामने गल कर बेखौफ ओ साधु। कहन लगे भी लंगर छकाया ते अरदास विच मेरा नाम नहीं लिया। असा लंगर छकाया कहिंदा तू जिदन जमया ते अपने नाल अनाज नहीं लैके आया रब ने भी तेरे मथे दा लिखिया तेनू दिता है अपने हथा नाल तू लंगर वरताया नहीं तैयार नहीं किया जिन्ना ने सेवा की अरदास भी ओदी होवेगी जे तू अरदास चाह मैं कल तू अपने हथा नाल तैयार कर। कहिंदे ने राणिया ने आप लंगर तैयार किया अपने हथी चकाया माता गंगा जी ने आप लंगर तैयार किया सिख तवारीख दे मुताबिक अपने सिर ते लस्सी दा कुजा चाची रख के मिठे प्रसादे रख के नाल एक गंढा प्याज लैके अचार लैके जदों गए ने ते विद्वान लिखदे ने मैकालप ने बड़ी प्यारी गल की ओ कहिंदा जदों सतगुरु दे ए महल माता गंगा जी बीड़ साहिब दे नेड़े पहुंचे ने ना ते बाबे बुढ़े दे हाथ दे विच दात्री सी। आ सौणी दा महीना चलदा पिया सी कमाद दे छोटे छोटे अजे फसल जिहड़ी पुंगरदी पई है छोटा छोटा कैमा कमाद लहरांदा पे अत्थों दा महीना जिक्र कीता सिख विद्वाना ने। कहन लगे चार चफेरे हरियावल ही हरियावल है क्योंकि मीह पै के अजे हटदे ने ते गुरु अर्जन देव दे महल गए ते बाबा बुढ़ा जी ने हाथ विच दात्री लै के खेत दे किनारे घा पै कढ़दे ने सिख सेवक नाल ने सामने माता गंगा जी तुरे आउंदे भेजे उस वक्त कहन लगे बाबा बुढ़ा जी मां देख अज तेरे पुत्र ने सवेर दा कुछ नहीं सकिया भुख नाल अंदर विलकदा पिया सी इहनू कहिंदे ने मां जेड़ी मां पुत्र दी भुख नूं समझ के ओहदे लई भोजन लै आवे ओही तां असली मां सवेर दी भुख लगी सी लिया जे मेरे लई कुछ तैयार करके लियाईए। सथां नाल ओह लस्सी वाला भांडा लाया प्रसादे लै उस वक्त मैकालप लिखदा माता गंगा जी हाथ जोड़ के खलो गए कह लगे साई वालियो तुहाडी पहुंच साई ताके असलियत साहब ने बाणी विच मन्ने के जाका मीत साजन है सज समिया तिस जन को कहो कांकी कमिया जाकी प्रीत गोबिंद से लागी दुख दर्द प्रमता का भागी ते जेड़े साई वाले ने ना जाता कया बरगा चले ओदी गलू कि मैं झूठिया कर मैं तो किसको नजर लै आवे तले साहब कहने जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे नानक दास मुख ते जो बोले इहा सच होवे सिख दा बचन कदी झूठा नहीं खोवे पुगया खोवे पहुंचया साहब कहने भगत मुखे ते बोल दे से बचन होवन दे जो कुछ उन्हें बोल देना सके हाथ जोड़ के क्या बाबा गुरु साहब ने तेरे को तेरे दर ते भेजे है। बाबा जी अदब नाल उठ पे कह लगे मां मेरा गुरु नानक दे घर तो बिना कोई नहीं हूं साथी जिद्दत दा गुरु नानक नू मिलिया उस दिन तो बाद किते गया नहीं तू मेरे अगे हाथ ना जोड़ मैं ता गुरु नानक दे दर दा ताई हां ते मैं कहना सारी जिंदगी मैं ताई बन के रहा कह लगे दस मेरे लिए तू हुक्म मैं की कर सकना कहन लगे सतगुरु ने कहा है तुसी अरदास करो मेरी कुख नू भाग लगे मैं पुत्र दी दात मंगण आई हां। बाबा बुढ़ा जी ने जदो इन्ने शब्द सुने कहन लगे मां सिर्फ तेनू एक भुलेखा पाई देन वाला तां ओही है कहिंदा मेरे वर्गे ताई नू केवल निवास दा पिया है दात तेनू उसे दर तो मिलनी है। मैं कालब लिखदा उस वक्त बदल चमकिया बिजली जड़ी है ओ चमकी बदल गजया ते बाबे बुढ़े ने हस के क्या मां आ देख जदो बदल चमकदा है ते एदी चमक लोकां दियां अखां नू चुंधिया देंदी है तेरे घर विच जिस पुत्र ने पैदा होना है जितन ओने म्यान विचो कृपान कढ़ी ओदी लिस्क दी कृपान जड़ी है दुश्मना दियां अखां नू चुंधिया दे तेरे घर विच बली जोधा पैदा होवेगा। आ प्याज वाली भी कटने के मुक्की भर के भन के कहा कि मां जिवें ए प्याज ए गंडा भन्या है तेरा पुत्र दुष्टां दे सिर नू भन्नेगा दुष्टां नू खत्म करेगा। कहिंदे माता ने अरदास कराई सिख संगत विच ए खबर फैल गई कि बाबे बुढ़े ने अरदास कीती है। एक आवाज आई कि बाबे बुढ़े दा बचन कदी झूठा नहीं हो सकदा। माता गंगा जी वापस आए सतगुरु अमृतसर तो वडाली आ गए जिन्हों आप अज गुरु की वडाली कहने हैं इथे आए ने जून का महीना आया ते कहिंदे ने ओ सुलखनी घड़ी आ गई। बाबा बुढ़ा अज भी बीड़ कह दे अमृत वेले मेरे मालक ने मेरी कृपा की जिस गुरु का पुरब आप मनाने गुरु हर गोबिंद साहब का आगमन हो जदो सतगुरु गुरु अर्जन देव नू खबर दिती दात्या तेरे घर अंदर वाहगुरु ने पुत्र दी दात दिती ते साहब ने कहा सतगुरु साचे दिया भेज कहिंदे ओने भेजे चिर जीवन उपजिया संजोग उतरै मैं आए किया निवास माता के मन बहुत विगास जमया पूत भगत गोविंद का। कहन लगे जेड़ा साडे घर पुत्र पैदा होया ए रब दी भगती वाला पैदा होया है ते वेखो पुत्रां दी दात असी भी मंगने हैं पर मेरे गुरु ने किहो जिहा सुपना लिया ते बाणी विच कहा लोकां ने कहा दाता तेरे घर अंदर पुत्र चलिया तेरी पीढ़ी अगे तुर पई। मेरे साहब ने कहा कल्ली पीढ़ी नहीं मेरा पुत्र धर्म दी ओ मर्यादा कायम करेगा जेड़ी रहती दुनिया तक गुरु नानक दे घर विच कायम रहेगी। इत्थे साहब ने शब्द वरत्या कहन लगे वधी वेल बहु पीढ़ी चाली ठीक है पीढ़ी भी चली है पर धर्म कला हर बंद बहाली वो एक मर्यादा कायम करेगा। साध संगत जब गुरु हरगोबिंद साहब का आगमन हुए है साहब ने कहा गुरबाणी सखी गावे उदो बाणी गाई गई आ टप्पे नहीं आ खुसरे नहीं नचाए गए शब्द गायन कीते गए कीर्तन किया गया। अज साडे लोकां दी बिरती है ना मैं खिन विचों निकल लगा गल करनी चाहिए गुरु दे घर जे पुत्र दी दात दिंदा है ता भी मेरा गुरु उस गुरबाणी नाल जुड़दा है जे किते पुत्र चलाना भी कर जांदा है गुरु हरगोबिंद साहब दे घर विच अकल ता भी बाणी दी गल करदा है। पर साडे लोकां नू तको सवेरे अखंड पाठ कराणगे लंगर भी चलदा होवेगा ते शाम नू उसे पुत्र नू लै के बकरे बुलांदे होणगे गुरु उहनां नू चेती नहीं रब चेते नहीं। साहब ने क्या कहन लगे गुरबाणी गाओ उस मेरे मालक ने मेहर कीती है उन्हें मेनू दात दिती है ते अज बजुर्ग बाबे बुढ़े नू बुलाओ। जदों बाबा बुढ़ा जी आए दीदार पाए
1: ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਨਾਮ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਏ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਸੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਿਰਸੀਏ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਦਣ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਦਾਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ, ਪਰਤ ਕੇ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸੱਪ ਲੈ ਜਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਪੇਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਖਡਾਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਸੂਲ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਮਣ ਮਰ ਗਿਆ। ਦਾਈ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਪੇਰਾ ਵੀ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਰੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਧਰ ਤਿਰਤੀਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸਲ ਵੱਟ ਲੈਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਫਲੂਮਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਪ ਦੀ ਘੂਕੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਤਲਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆ ਦੁਰਗਿਆਣੇ ਮੰਦਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਚਾੜੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਵਾਰੀਖ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ੀਤਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਤਾਪ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਰਮ ਗਏ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਰਮ ਗਏ ਪੂਰਨ ਪਈ ਸੇਵ, ਸ਼ੀਤਲਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ੀਤਲਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੈ ਸੋ ਜੀਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਣੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖੂਨੀ ਕੀਤੇ ਸੱਕੇ ਤਾਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ, ਕਦੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਅਚਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੀਰੇ ਤੋਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਏਦੂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਡੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਝਾਂਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਡਰੌਲੀ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਡਰੌਲੀ ਰਹਿ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਚ ਤੁਲਕਾਣੀ ਡਰੌਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਲੱਦ ਲਿਆ, ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਟਿਕ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਟਿਕਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ, ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ, ਅਚਨਚੇਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਟਿਕ ਜਾਓ। ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਗਏ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਏ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਤ ਨਿਕਲੀ। बरात वापस आउंदी पई डोली लैके, इथे डरौली रात पै गई। ते उस बरात नूं लिजाने वाले जेड़े ने उन्होंने कहा रात आपां इथे रुक जाइए, सवेरे तुरांगे। जदों रुक गए, इधर कीर्तन पिया होवे ते उस डोली विच जेड़ी बैठी है ना, ओ कोई आम औरत नहीं, एक सिख दी धी है। ते जिदे लड़ लगी है वह सरवर नूं मनण वाला, ओ कबरां नूं पूजदा है, ओ अमृत वेले सुखमनी पढ़न वाली है, ओ कबरां ते रोज चढ़ांदा है, ते ओ गुरबाणी दा कीर्तन करन वाली है। ते जदों डोली तुरी, बस मन भर के इको गल कही सी, बापू तू ता मैनू लड़ ला दिता सरवर दे, सरवर दी पूजा करन वालियां दे, मैं सुखमनी कदी अमृत वेले उस घर विच गाऊंगी, कदी मैं कीर्तन करांगी। कहन लगी बापू तू ता लड़ लाया केड़ा लिखियां नूं मेट दई, पर मैं टेक गुरु दी लैनी आ कि जे सिखी दी दात दित्ती आ ते कृपा करी मेरी ये सिक्की निब जाए। ओ बच्ची पालकी विच उस डोली विच बैठी है, जदो ओदे कन्ना विच कीर्तन दी आवाज पई ना, ते सिख विद्वान लिखदे ने, ओने कहारा नूं पुछिया किसे लंघन वाले आदमी नूं रोको, किन्ने एक आदमी कोल आया, ओनू चकदी ने पुछिया बाबा इस पिंड विच सिख रहिंदे ने? कहन लगा नहीं धीए सिख नहीं, सिख भी रहिंदे ने, इस पिंड विच तां गुरु हरगोबिंद साहिब आए ने, अज सवेरे उन्हां चले जाना सी, पर पता नहीं अज रात इत्थे क्यों रुक गए ने, सारी तैयारी कीती फिर रुक गए ने। ओदियां अखां पा रहियां, कहन लगी सतगुरु नहीं, लिखे नूं कोई मेटण वाला भी है, अज तू केवल मेरी खातर रुकी है। डोली विचों कहारा नूं सोने दे कंगण दे दिते, गहने ला दिते। कहन लगी डोली किते उस आवाज दे नेड़े लै जाओ। सिख विद्वान सुखबीर सिंह लिखदा है डोली नूं दीवान दे कोल लै गए, उतर के थले गई, गुरु हरगोबिंद साहिब बैठे ने, बोले कुछ नहीं केवल मुस्कुरा गए ने। मुस्कुराए, बच्ची ने नमस्कार कीती, कीर्तन विच सब तो पिछे जाके बैठ गई। चेहरा जेड़ा ओ घबराया, रंग जेड़ा ओ पीला पिया। समाप्ति से साहब कहिंदे ने बीबी चंद उस बच्ची नूं बुला के लिया, ओदा जोड़ा सुहाग वाला है, पर की कारण ओदे चेहरे ते उदासी क्यों? कहिंदे ने जदों भाई बीबी चंद कोल गया, कहन लगे बेटा तेन सतगुरु ने बुलाया। कोल गई, बोली कुछ नहीं, केवल अखां दे पानी ने बोल के दस दिता एदे अंदर दी कोई वेदना। साहब ने प्यार दिता, कहन लगे धीए दस तां सही, जोड़ा सुहागणा वाला तेरा श्रृंगार तू सुहागण है ना व्याई है, पर अखां विच पानी तेरा क्यों घबराया? कहन लगी सतगुरु सिख दी धीआं ते लड़ उन्हां दे लगियां जेड़े कबरां ते दीवे बालदे ने, ओ तां तेरी बाणी दे नेड़े नहीं जांदे, पर मैं सोचनी हां तेरा उदास है कि मेरी सिक्खी निब जाएगी, मेरे तो गुरु नानक दी बाणी कोई खोएगा ते नहीं। साहब ने अगो हस के कहा धीए चले तो सवेर का जाना सी, पर अज सवेरे जदों तू आवाज दिती अज दा दिन मैं केवल तेरी खातर रुकिया होया, अज दा दिन तेरी खातर टिकिया मैं। जदों एदे सहुरे नूं पता लगा कि ओ ता गुरु नानक साहब दे दरबार विच गई है, एदे मालक दा नाम की साधु, आवाज दे के कहिंदा जा ओनू रैल लियार तू वापस, साडा की संबंध सिखां दे नाल ते सिखां दे गुरु नाल। जदों वापस लैण गया ते साहब ने दूरों देख के कहा कि ना भाई साधु है जां साधुआं वाला कोई गुण भी है, ओ मालक है। हसने उस औरत दा, कहन लगे नाम दा साधु जां साधुआं वाला गुण भी है, गुरु दे एक बचन ने विन दिता। कहन लगा दाता नाम दा साधु आ, गुण कोई नहीं, जे त्रुटा ते मेनू कृपा करके साधुआं वाले गुण दे दे। चरना ते ढहटिया, सिखां वाली चेहरे नूं टकिया ते साहब खुश होए, कहन लगे साधु तेनू करतार चेते आवे, हुण देखो गुरु ने किन्नी रहमत कीती मेरे मीरी पीरी दे दाते ने। साधु तुरन लगा है ते चरण पकड़ के कहिंदा दातिया सारा पिंड सरवरियां दा है कि साडी सिक्खी निभ जाएगी? ते साहब ने कहा साधु तेरा घर सिक्खी दा धुरा होवेगा, इह शब्द वरतिया, तेरा घर केंद्र होवेगा ते जेड़ा तेरे घर विच पुत्र आउणा है ओ इन्ना कुछ सिदक वाला होवेगा ਉਹਦੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ। ਘਰ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਬਰ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ।

जो लर दीन के खेत पुरजा पुरजा कट मर कबू ना छड़े खेत मरता मरता जग मुआ कबीर मरता मरता जग मुआ मर भी ना जानिया कोई ऐसी मरनी जो मर बहुर ना मरना हो ऐसी मरनी जो मर बहुर ना मरना हो।